0: Opponents of Lord Ram should not invoke Shiv's procession and went on to call them as anarchists. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma joined in on the criticism, asking Rahul Gandhi to learn to respect Sanatan first before invoking Tandav, and even dared him to visit the Ram temple.
1: ये शिव की बारात है, इसमें किसी को भी आना आ सकता है, कोई भी जीव आ सकता है, हम रोकेंगे नहीं। दूसरा भारत जोड़ो यात्रा, उसमें कोई राजा नहीं था, उसमें सब एक साथ चल रहे थे, उसमें हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, वो तांडव था, वो शिव की बारात थी, उसमें कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जानवर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, बंदर आ जाए, जो भी आना चाहे आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
2: कांग्रेस तो शिवजी की बारात है, ये राम का विरोध करने वाले शिवजी की बारात की बात कर रहे हैं, ये शिवजी की बारात नहीं है। अराजकता फैलाने वाले हुड़दंगियों की जमात है जो सड़कों पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है।
3: जो भगवान राम का मंदिर का विरोध किया, आज वो शिवजी का नाम ले रहे, मैं तांडव करूंगा। तांडव करने का पहले सनातन को सम्मान करने का सीखो। दिन भर आप सनातन को गालियां देते हैं, राम मंदिर को गालियां देते हैं, और आज आपको शिवजी याद आया, तांडव याद आया। अगर आपको सचमुच सनातन के लिए आपका रेस्पेक्ट है, क्या आप अभी भी राम मंदिर जा सकते हैं? जनता ये भूले नहीं है, आज आप खुद शिवजी बन गया, शिवजी का बारातों में आए, क्या शिवजी को आप पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएगा उस तरफ?
0: Now, a viral video from yesterday's opposition protest is making the rounds. In this video, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar can be seen struggling to keep pace with Rahul Gandhi as he marches on shortly after DKS gets pushed behind and security personnel swoop in. The Chief Minister is then lost in the crowd. The BJP has mocked this video, asking, is it the plight of a Chief Minister? Adding that how D.K. Shivakumar is viewed in Rahul's eyes has now been exposed. Let's take a look at the other defining image that has come in from yesterday's opposition protest march. Congress shared Rahul Gandhi's image holding a Batman mask with the caption Batman mode. In another image, Congress chief Mallikarjun Kharge was seen trying on the Batman mask with Rahul helping him. Next image on your screens, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar was seen accompanying Rahul and Priyanka Gandhi Vadra when he was shoved away by the crowd. The viral video shows D.K. Shivakumar trying to keep pace with Rahul Gandhi when security personnel swoop in, pushing the Chief Minister behind. Next is the AISA President Neha Bora marched with Rahul and Priyanka at the protest. She was seen flanked by thousands of opposition bloc supporters and leaders. And for now, we head into a very short break. News and updates to continue. You're watching NDTV. Stay tuned.
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से
6: देश का टायर जेके टायर
7: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ

0: पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
1: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: Hindustan mile, Hindustan se.
2: देश का टायर जेके टायर
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात
4: वाओ मामा क्या स्वाद है
3: अरे मेरे राजा

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
2: यू नो डिजाइन कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर,
3: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर JK टायर।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा प्योर मसाला।
10: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten.

सीढ़ियाँ थी मेरे ऊपर, मेरे पीठ के ऊपर मेरा कैमरा पर्सन, मैं पेट के बल जमीन पे गिर गई, मेरे घुटने में, पैर में, शोल्डर में, नेक में, सब जगह भी मुझे पेन है, पेन किलर्स पे हूँ मैं। और फिर उसके ऊपर चार पांच लोग और गिर गए, मैं बिल्कुल भीड़ में नीचे दब गई। फिर लोग उठे, मैं भी उठी, आई स्टार्टेड शाउटिंग। जो मैंने वीडियो शेयर किया है उसमें आपने देखा होगा कि मेरे साथ एक फीमेल है, किसी की आवाज़ है, राहुल जी ये ठीक नहीं है, और तब तक ये सब राहुल जी ने कर दिया था। मैं गिर गई थी, मैं उठी हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ कि मेरा माइक है, मेरा माइक गिर गया है। एंड उनके जो लोग थे, राहुल गांधी के लोग, दे स्टार्टेड शाउटिंग राहुल गांधी जिंदाबाद, ताकि मेरी आवाज़ ना आए बाहर कि मैं, मुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया, मैं गिर गई हूँ। उसके बाद से मैं उठी हूँ वहाँ पर, मैं अपनी माइक ढूंढ रही हूँ, भीड़ में से एक आध लोगों ने मुझे मेरी माइक उठा के दे दी। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि ये राहुल गांधी है जिसने मुझे धकेला है, ये राहुल गांधी है। एंड उनके लोग मेरा मुंह बंद कराने की कोशिश करने लगे, कुछ लोग गिरी हूँ मुझे मेरा हालचाल नहीं पूछ रहे हैं, मुझे असिस्ट नहीं कर रहे हैं कि चलो बैठ लो पानी पी लो, वो लोग मुझे कन्फ्रंट कर रहे हैं कि मैं झूठी हूँ।

0: all the messages I'm receiving, ki how shameful this word has become, shameless everybody has become, ki कोई गिर गई है औरत, वो वीडियो है, ऑन क्लियर विजुअल्स है उसके, और
1: जी वी कैन सी द विजुअल्स, वी कांट रियली हियर व्हाट्स हैपनिंग, परहैप्स फॉर अ मोमेंट वी शुड जस्ट लिसन इन, इट्स अ वेरी क्राउडेड सिचुएशन रिचा, एंड आई कैन सी दैट यू आर देयर, यू क्लेम दैट राहुल गांधी हिमसेल्फ रीच्ड आउट एंड पुश्ड यू एंड देन हिज सिक्योरिटी आल्सो पुश्ड यू, फॉर अ मोमेंट कैन वी जस्ट लिसन इन टू दैट वीडियो प्लीज,
2: मत कीजिए मैम, आप सब चमचागिरी मत कीजिए, ये मेरे से चमचागिरी क्या हुआ, आप स्टार्ट क्यों नहीं कैमरा, चमचागिरी किया जा रहा है, द थ्रैश द फीमेल,
3: राहुल गांधी जिंदाबाद,
2: I can't keep patience.
4: Keep patience.
2: He threw me out.
4: कोई नहीं ढकेला के.
2: अच्छा कोई नहीं ढकेला. पार्टी में गिरी हूँ. मैं गिरी हूँ. आप लोग क्या मेरे पे भीड़ आके आप लोग मुझे मारेंगे क्या भीड़ आके?
5: ऐसे कोई लोग भीड़ में.
4: मैम यहाँ देखो ग्राउंड बहुत ज़्यादा है.
2: हाथ से धक्का दिया.
4: ग्राउंड बहुत ज़्यादा है.
2: मेरे this is my job. आप लोग मेरे से ये चमचागिरी मत कीजिए.
1: Video there, it was a very crowded situation. Rahul Gandhi, you know, was asking you to move ahead. It seems we couldn't exactly see the fall. You get up and you say that I fell onto my knees, and then you are, you know, calling out what took place, saying that it seems that you lost your mic as well when you fell onto your knees, is what you said just after that incident. Rahul Gandhi, you know, I can see it's a very crowded situation, asking you to move on, but tell us, what is your situation now? You went to the hospital after this.
0: Yes, I came directly to the my One India seniors supported me at that time. I called them. This has happened to me. उन्होंने बोला कि don't shut your mouth, speak about it. जो हुआ है तुम्हारे साथ, my seniors, everybody, Nagin, Keshav, Pankaj, everybody were on call, and they said कि बोलो, video डालो, and हम लोग आ रहे हैं. देन मैंने बोला कि सर अभी मेरा हस्बैंड, माय हस्बैंड वाज देयर, मेरी बहन आ गई थी, शी वो इधर राजेंद्र नगर में ही रहती है, तो ये लोग पास थे, तो ये लोग लाइव देख रहे थे आज तक पे, और इन लोगों ने देखा कि मैं भीड़ में हूँ, फंसी हूँ और मैं गिरी हूँ, तो इन लोगों ने मुझे तुरंत फ़ोन भी किया, तो मेरा कैमरा पर्सन बताया कि हाँ ठीक, ऐसा ऐसा है, वी आर हेयर, तो ये लोग वहाँ पर पहुँच गए, तो ये लोग मुझे यहाँ पर गंगाराम में लेकर आए हॉस्पिटल में, और फिर मुझे बहुत सारी चोटें आई थी, तो पेन किलर्स वगैरह जो बेसिक एड्स वगैरह है मुझे दिया गया. पहले तो मैं वहाँ आधा घंटे के लिए बैठ के रो रही थी, बिकॉज आई कुड नॉट प्रोसेस व्हाट हैज हैपेंड टू मी बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड हैविंग हर आईडी कार्ड इन हर नेक, माइक आईडी इन हर हैंड्स, एंड आई वॉज थ्रैश्ड आउट, आई वॉज पुल्ड आउट, लाइक ओ माई गॉड. I was very
1: already shocked. I have to say, I don't see any, you know, thrashing per se. Yes, Rahul Gandhi does ask you to move, and you say after that you fell down. The Congress has questioned your account of what, you know, you are claiming, saying Alka Lamba has said that kuch to sharam karo andh bhakto. She says that firstly, the protest during pregnancy carries risks, and I think that's something, that's her remark. She says that your sister reached the BJP MLA's office to manufacture propaganda, and the fourth point that she makes is the claim that you underwent an x-ray, which is usually not done during pregnancy. So Congress really questioning your account of what took place there in the Supreme Court.
0: Shameful work. This situation, they should come and see me, and they should provide aid to me. What the BJP persons came to me and were doing, and no X-ray has been done, because I revealed only yesterday. Only I revealed that I am pregnant. Else, my team could not have sent me to the field. Although my doctor has said ki I was fine, I can do reporting, I can do whatever the journalism work I am doing. So I was doing with the suggestions of my doctor. So they all, it's very, being a journalist, they cannot shut my mouth, and shame on them who are saying this, despite giving me help.

0: और भाई आईडीज लग रही है, तो फिर मेरा काम है जिसको मैं जॉब, तो मैंने फिर से माइक लगा दिया। इतने में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरा कैमरा पर्सन मेरे पीछे था और राहुल गांधी सडनली बहुत गंदे एक्सप्रेशन के साथ ही मूव फॉरवर्ड, मुझे पता भी नहीं है क्या, अचानक से उन्होंने मेरा ये हाथ ऐसे पकड़ा,
1: फिर इधर
0: ये हार पकड़ा है और ऐसे खींचा है
1: जी
0: आगे की तरफ, और वो उस टाइम राहुल गांधी ने मुझे इतना खींचा, और तब तक उनके जो बॉडी गार्ड थे उन्होंने ऑल ऑफ सडन मुझे समझ नहीं आया, मुझे पूरा खींच के पुश कर दिया। और मैं सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता है वहां पे 2 या 3 सीढ़ियां एग्जैक्टली, मैं काम नहीं कर पाई, बहुत भीड़ थी, मैं मुंह के बल सीढ़ियों पर गिर गई।
1: तो राहुल ने आपको पूरा
0: राहुल
1: सुन
0: गांधी
1: लिया।
0: फर्स्ट, राहुल गांधी ने सबसे पहले मुझे पकड़ा, वीडियो भी है उसमें साफ साफ दिख रहा है।
2: In fact, a little while earlier, we spoke with the journalist Richa Parashar. Listen in to her account of what took place, as well as her counter to what the Congress is saying, where they have denied anything like what she's describing took place. Richa ji, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। अगर आप बता सकते हैं आपके साथ क्या हुआ कल?
3: थैंक्स फॉर टेकिंग मी अप मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बता दूं, जो लोग मुझे बैकलैश कर रहे हैं कि एक ये इन्फ्लुएंसर है, नो, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई वर्क फॉर वन इंडिया, एंड वहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट मार्च राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कवर कर रही थी। आई वॉज स्टैंडिंग पीसफुली एट अ प्लेस जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, एंड राहुल गांधी उनके बॉडीगार्ड्स उनको घेर कर वहाँ पर खड़े थे, सब उनके राहुल गांधी की तरफ अपनी माइक आईडी लगाए हुए थे, मैंने भी वन इंडिया की माइक आईडी उनकी तरफ लगाई। उन्होंने बोला कि इसको हटाओ, तो मैंने माइक आईडी हटा दी। उसके बाद से ऑल ऑफ सडन आई सॉ कि बाकियों ने वापस से माइक आईडी, वो सब वो बोल रहे थे, सब ने अपनी माइक आईडी और कैमरा ऑन किया। मेरा कैमरा पर्सन ने भी कैमरा ऑन किया, मैंने माइक आईडी दोबारा से लगाई। ऑल ऑफ सडन आई सॉ सब कुछ 5 सेकेंड के अंदर हुआ। राहुल गांधी केम फॉरवर्ड अपने बॉडीगार्ड्स का हाथ हटाते हुए, एंड उन्होंने मुझे शोल्डर से पकड़ा और खींच दिया, बिल्कुल गिराने ऐसे भगाने के लिए। आई वॉज वेरी शॉक्ड। मुझे
2: ये सुप्रीम कोर्ट के पास हुआ, जस्ट टू अंडरस्टैंड, किस समय?
3: सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ।
2: सुप्रीम कोर्ट के अंदर?
3: हाँ जी, इट वॉज अप्रोक्स 6:30 PM।
2: ऑल राइट।
3: और सुप्रीम कोर्ट की उसके बाद जहां पर उन्होंने मुझे पुश किया, और तुरंत मुझे पुश करने के बाद, पुल करने के बाद, मेरे कैमरा पर्सन को कोनी से बहुत तेज मार दिया उन्होंने। वो वीडियो में सब कुछ आप लोगों ने देखा होगा क्लियरली, येलो कैप्ड पर्सन इज माय कैमरा पर्सन। तो उन्होंने उसको धक्का मारा, इधर उनके बॉडीगार्ड्स ने मुझे बहुत तेज पुल कर दिया, पुश कर दिया, मैं सीढ़ियों पे गिर गई। वहीं पे सीढ़ियां थी, मेरे ऊपर, मेरे पीठ के ऊपर मेरा कैमरा पर्सन, मैं पेट के बल जमीन पे गिर गई। मेरे घुटने में, पैर में, शोल्डर में, नेक में, सब जगह भी मुझे पेन है, पेन किलर्स पे हूँ मैं। और फिर उसके ऊपर 4-5 लोग और गिर गए, मैं बिल्कुल भीड़ में नीचे दब गई। फिर लोग उठे, मैं भी उठी, आई स्टार्टेड शाउटिंग। जो मैंने वीडियो शेयर किया है उसमें आपने देखा होगा कि मेरे साथ एक फीमेल है, किसी की आवाज़ है, राहुल जी ये ठीक नहीं है, और तब तक ये सब राहुल जी ने कर दिया था। मैं गिर गई थी, मैं उठी हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ कि मेरा माइक है, मेरा माइक गिर गया है, एंड उनके जो लोग थे, राहुल गांधी के लोग, दे स्टार्टेड शाउटिंग राहुल गांधी जिंदाबाद, ताकि मेरी आवाज़ ना आए बाहर कि मैं, मुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया, मैं गिर गई हूँ। उसके बाद से मैं उठी हूँ वहाँ पर, मैं अपनी माइक ढूंढ रही हूँ, भीड़ में से एक आध लोगों ने मुझे मेरी माइक उठा के दे दी। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि ये राहुल गांधी है जिसने मुझे धकेला है, ये राहुल गांधी है, एंड उनके लोग मेरा मुंह बंद कराने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग गिरी हूँ, मुझे मेरा हालचाल नहीं पूछ रहे हैं, मुझे असिस्ट नहीं कर रहे हैं कि चलो बैठ लो, पानी पी लो, वो लोग मुझे कन्फ्रंट कर रहे हैं कि मैं झूठी हूँ, मैं गोदी हूँ, मैं दल्ली हूँ, ऑल द वर्ड्स, ऑल द मैसेजेस आई एम रिसीविंग, कि हाउ शेमफुल दिस वर्ड हैज बिकम, शेमलेस एवरीबडी हैज बिकम, कि कोई गिर गई है औरत, वो वीडियो है, ऑन क्लियर विजुअल्स हैं उसके, और
2: जी वी कैन सी द विजुअल्स, वी कांट रियली हियर व्हाट्स हैपनिंग, परहैप्स फॉर अ मोमेंट वी शुड जस्ट लिसन इन, इट्स अ वेरी क्राउडेड सिचुएशन रिचा, एंड आई कैन सी दैट यू आर देयर, यू क्लेम दैट राहुल गांधी हिमसेल्फ रीच्ड आउट एंड पुश्ड यू, एंड देन हिज सिक्योरिटी आल्सो पुश्ड यू, फॉर अ मोमेंट कैन वी जस्ट लिसन इन टू दैट वीडियो प्लीज।
4: मत कीजिए, आप सब चमचागिरी मत कीजिए, ये मेरे से चमचागिरी क्या हुआ, आप स्टार्ट क्यों नहीं कैमरा, चमचागिरी किया जा रहा है, थ्रैश द फीमेल,
5: राहुल गांधी जिंदाबाद।

0: across to Tejshri now for more on this story. And Tejshri, tell us what's happening right now. Saurav Das and Ashutosh Ranka taken into custody by the police after protesting at Jantar Mantar.
1: Well, absolutely. Jantar Mantar was denotified yesterday as a protest site. Perhaps it was completely barricaded. And 163 BNS was already imposed in the several parts of the national capital. Despite all of these things, the CJP leaders attempted to go towards Jantar Mantar. They were trying to jump from the very gate, as we can see in the video as well. And they were trying to move towards that very part, towards Jantar Mantar. But then, however, they were...
0: All right, Tejshri, sorry to interrupt you there. Prime Minister Modi is addressing the 8th annual Bloomberg New Economy Forum in Delhi. Let's listen in.
2: Our industry ke leaders, policy makers, aur mere saathiyon, Bharat mein aap sabhi ka bahut bahut swagat hai. कुछ देर पहले मिस्टर ब्लूमबर्ग ने यहां अपनी बात रखी. 30 साल की उनकी यात्रा और वो मुझे कह रहे हैं कि वो मैं उनका मित्र हूं. वो आयु में भी बड़े हैं, अपने काम के संबंध में बड़े सफल व्यक्ति हैं और सफल भी है, समर्पित भी है. और भारत के प्रति उनका जो प्यार है उसको मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया है. और इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा उनका सम्मान करता हूँ, उनका चाहक रहा हूँ. और आज भी भारत के प्रति उनका प्रेम, वैश्विक मंचों पर भारत के प्रति उनकी भावनाएं हमेशा बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने वाली रही है. और इसके लिए मैं श्रीमान आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. हर साल ये फोरम दुनिया के बेहतरीन माइंड्स को एक साथ लाता है. यहाँ इकोनॉमी पर चर्चा होती है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और ग्लोबल अफेयर्स पर विमर्श होता है. और इस बार पहली बार यह आयोजन भारत में हो रहा है. मैं मिस्टर ब्लूमबर्ग और उनकी पूरी टीम को इस निर्णय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. आपने सही समय पर सही जगह चुना है. फ्रेंड्स, इस साल ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम की थीम दुनिया में उभरती नई पावर्स पर केंद्रित है. हर युग में पावर के अपने स्रोत रहे हैं, अपनी परिभाषा रही है. लेकिन 21वीं सदी में, खासकर तीसरे दशक में, एक बड़ा बदलाव हो रहा है. टुडे टेक्नोलॉजी इज पावर, डेटा इज पावर, नॉलेज इज पावर, इनोवेशन इज पावर. लेकिन साथियों, असली सवाल यह नहीं है कि पावर किसके पास है, बल्कि सवाल ये है कि इसका यूज कैसे हो रहा है. क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बनाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी। यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर

टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर्स सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहां जिस विजन के साथ आया हूं वो है पावर टू एम्पावर। साथियों, ये विचार भारत के लिए नया नहीं है। हमारे यहां कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विप्रीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका भाव यही है कि ज्ञान, धन और शक्ति जिसके पास भी हो वो इनको यूज कैसे करता है ये महत्वपूर्ण है। यानी पावर का असली मूल्य उसके पर्पज में है। और इसी सोच को आज के दौर में समझना बहुत जरूरी है। साथियों, पावर टू एम्पावर करने वाला जो ये मानवीय भाव है, ये सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी परंपरा ने हमें सिखाया है और भारत में हमने इसे अपनी गवर्नेंस में, अपनी कार्य संस्कृति में लागू करके दिखाया है। इसलिए मैं भारत के उदाहरणों से ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से अधिक यूट्यूब यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है। और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर। साथियों, 12-13 साल पहले तक भारत में एक समय वो भी था जब मोबाइल और इंटरनेट तक पहुंच भी अपने आप में एक शक्ति

बनाने पर जोर दिया। इसी का नतीजा है कि आज एक छोटे शहर का विद्यार्थी भी डिजिटल लर्निंग से जुड़ सकता है, किसी गांव में एक छोटा दुकानदार भी नए कस्टमर्स तक पहुंच सकता है, एक युवा भी ऑनलाइन नए कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। यानी भारत में कनेक्टिविटी ने सिर्फ लोगों को कनेक्ट नहीं किया, उसने अपॉर्चुनिटीज को भी कनेक्ट किया है। यही पावर टू एम्पावर है। साथियों, आप में से जो अतिथि विदेश से आए हैं, उन्हें मैं कहूंगा कि आप भारत के डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को भी आजमा कर देखिए। हमारे यहां एक स्ट्रीट वेंडर और एक बड़े कार शोरूम का कारोबार अलग अलग है, उनका स्केल अलग है, लेकिन भारत में ये दोनों डिजिटल पेमेंट्स के एक ही इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी की ताकत है। साथियों, भारत का जो भी सामर्थ्य है उसे हम अपने घर में ही रखने के समर्थक नहीं है, उसे हम ग्लोबल साउथ के साथ, अन्य पार्टनर कंट्रीज के साथ निरंतर साझा करते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुभव को हम दूसरे देशों से शेयर कर रहे हैं ताकि वे अपनी जरूरतों के अनुसार अपने डिजिटल सिस्टम्स विकसित कर सके। हमने कोविड के समय भी कोविन प्लेटफॉर्म बनाया था जो ओपन सोर्स था। यानी हमारे ये निरंतर प्रयास है कि भारत की कैपेबिलिटी दूसरे देश के लिए भी पॉसिबिलिटीज के नए दरवाजे खोले। यानी हमारा सामर्थ्य मानवता को एम्पावर करें। साथियों, इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है। एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है। वर्ष 2014 से पहले भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते थे, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई है। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं, नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, नए सॉल्यूशंस बन रहे हैं। साथियों, पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा 25

21 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। साथियों, आपने जेम ट्रिनिटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में भी सुना होगा। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट तक सरकारी मदद सीधे पहुंचाने की व्यवस्था बनाई है। इससे करप्शन कम हुआ है, देश के नागरिक की सुविधा बढ़ी है, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच सीधा रास्ता बना है। साथियों, पावर टू एम्पावर की यही सोच भारत की ग्लोबल एंगेजमेंट में भी दिखाई देती है। कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का बहुत बड़ा महत्व था। तब सवाल था कि क्या इस ताकत का फायदा भी कुछ ही देशों तक सीमित रह जाएगा, या फिर जिनके पास ये सुविधा और ये सामर्थ्य नहीं है उन देशों उन लोगों तक भी वैक्सीन पहुंचेगी। भारत ने मानवता को एम्पावर करने वाला रास्ता चुना। हमने 100 से अधिक देशों को वैक्सीन की सप्लाई की। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दूसरे देशों के लिए भी सहायता का माध्यम बनी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूंगा। कुछ महीने पहले भारत में AI इम्पैक्ट समिट हुई और श्रीमान ब्लूमबर्ग जी ने भी उस AI समिट की अभी बहुत तारीफ भी की है। इसमें हमने ह्यूमैनिटी के लिए AI के उपयोग के साथ ही एनिमल्स को कैसे AI का फायदा हो इससे भी चर्चा का विषय बनाया। नंदन यहाँ बैठे हैं, आपको बाद में काफी जानकारी वो दे सकते हैं ये कैसे किया। यानी भारत जितना सक्षम होगा मानवता के लिए, दुनिया के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, पावर इज नॉट जस्ट एबिलिटी टू मूव अहेड, इट इज ऑल्सो द एबिलिटी टू एम्पावर अदर्स टू मूव अहेड। भारत का मानना है कंपटीशन जरूरी है लेकिन कंपेशन भी होना चाहिए। इनोवेशन जरूरी है लेकिन उसके लाभ का विस्तार भी होना चाहिए। नेशनल स्ट्रेंथ जरूरी है लेकिन ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे। साथियों, मैं आप सभी को एक और उदाहरण देता हूं। पेरिस एग्रीमेंट के तहत क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भारत ने एक बड़ा कमिटमेंट किया था। साल 2015 में हमने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक अपने इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% नॉन फोसिल सोर्सेज से हासिल करेंगे और भारत ने यह उपलब्धि नवंबर 2021 में ही हासिल कर ली। यानी तय समय से 9 साल पहले भारत ऐसा करने वाला पहला G20 देश बना। यह केवल एक कमिटमेंट पूरा करने की बात नहीं थी, यह भारत की बदलती हुई एनर्जी जर्नी का भी

संकेत था। साथियों, 2014 में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब 75 गीगावाट थी, आज ये करीब 300 गीगावाट हो चुकी है, यानी हमने लगभग 4 टाइम ज्यादा कैपेसिटी ऐड की है। साथियों, भारत में हो रहे इस एनर्जी ट्रांजिशन के नए अवसर भी बन रहे हैं। आज हमारे यहां पीएम सूर्यघर और पीएम कुसुम जैसी स्कीम्स चल रही है। एक योजना घरों को सोलर पावर से जोड़ रही है, दूसरी योजना किसानों को सोलर एनर्जी पैदा करने और उसके यूज से इनपुट कॉस्ट कम करने का सामर्थ्य दे रही है। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से भारत को 30 गीगावाट से अधिक सोलर कैपेसिटी हासिल हुई है। इनसे हर साल करीब 30 मिलियन टन से अधिक कार्बन एमिशन कम होने का अनुमान है। यानी सोलर पावर प्रकृति की रक्षा करने का माध्यम भी बन रहा है और लोगों को एम्पावर भी कर रहा है। साथियों, दुनिया में पावर की इस भागदौड़ में भारत एक अलग मिजाज लेकर चल रहा है और उसका गवाह ये दशक भी है। साथियों, 21st सेंचुरी का ये डिकेड अभूतपूर्व ग्लोबल चैलेंजेस लेकर आया है। हम अगर पिछले 6 वर्षों को देखें, हमने ग्लोबल पैंडेमिक देखी, फिर अलग अलग रीजन्स में युद्ध छिड़ गए, जैसे इतना ही काफी नहीं था, फिर ट्रेड हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो या एनर्जी सप्लाई हो, उसमें भी अड़चने आ रही है। दुनिया एक संकट से बाहर निकलने का रास्ता तलाशती है, तब तक एक नया संकट सामने आ जाता है। जिन चीजों ने कभी दुनिया को जोड़ा था, वही आज वेपन बन रहे हैं। सप्लाई चेन्स हो, एनर्जी हो, मिनरल्स हो, पेमेंट्स हो या टेक्नोलॉजी, ये दबाव और दबदबे का माध्यम बन रहे हैं। बीते दशकों में ग्लोबलाइजेशन ने जो रूट्स बनाए, वो कब और कहां चौक पॉइंट्स बन गए, ये हम सब देख रहे हैं। इन सब के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में काम करने के तरीके बदल रही है। अनेक देशों में एजिंग से जुड़े चैलेंजेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल ट्रस्ट का है, भरोसे का है। भरोसा ये कि जरूरत के समय सप्लाई जारी रहेगी, भरोसा ये कि जो प्रॉमिस किए हैं वो निभाए भी जाएंगे, भरोसा ये कि संकट के समय हमारा पार्टनर कंट्री साथ खड़ा रहेगा। और यहीं पर भारत एक अलग मिजाज, एक अलग सोच के साथ आपके सामने है। साथियों, 21st सेंचुरी में भारत की प्रगति सबके साथ मिलकर, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कहानी है। जब दुनिया को एफोर्डेबल मेडिसिन्स की जरूरत होती है, तो हर 5 में से 1 जेनरिक मेडिसिन भारत से आती है। जब डिजिटल आइडेंटिटी और पेमेंट के सॉल्यूशन चाहिए, तो भारत में विकसित मॉडल दिखता है। जब दुनिया को टैलेंट की जरूरत होती है, तो भारत के स्किल युवाओं पर भरोसा होता है।
आज भारत में

0: 2000 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जो दुनिया भर की कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। साथियों, ये स्पष्ट है कि जब भी दुनिया को एक स्टेडी पिलर की जरूरत होती है तो भारत अपना दायित्व समझते हुए हाथ आगे बढ़ाता है। वी डू नॉट ग्रो एट एनीवन्स कॉस्ट, वी ग्रो विद द वर्ल्ड एंड फॉर द वर्ल्ड। और साथियों, भारत जो करता है उसका क्रेडिट भी नहीं चाहता। दुनिया गर्व से कहती है कि भारत ने दुनिया को जीरो दिया। इस जीरो ने पूरी मानवता का लाभ किया, लेकिन भारत ने इसके लिए कभी भी रॉयल्टी नहीं मांगी है। और आज भी भारत इसी भावना के साथ काम करता है। और आज की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे जो विचार हैं उनमें भी वो सारी बातें दिखती हैं। इतिहास में अनेक वैश्विक संगठन बने हैं, उनके अपने अपने हित रहे हैं, लेकिन भारत ने किस तरह के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स बनाए, आप भी गौर कीजिए। हमने कैसी कैसी संस्थाओं को जन्म दिया और दुनिया में क्या क्या हुआ है उसका जरा एक बार तुलना करके देख लेना। हमने क्या दिया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमने क्या दिया? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने क्या दिया? बिग कैट अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। यानी जिनसे सबका भला हो, हर जीवन का भला हो, ऐसे इनिशिएटिव भारत ने लिए हैं। साथियों, भारत किन विचारों को लेकर सामने आया है ये भी आपके सामने है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का विजन, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये हमारी सोच। वन अर्थ, वन हेल्थ, ये हमारी दूरदृष्टि। यानी भारत जोड़ने पर और जुड़ने पर बल देता है, और इसमें भी पावर का इस्तेमाल दूसरों को एम्पावर करने के लिए ही है। साथियों, अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है, और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग 0.5% यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $700 बिलियन से अधिक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है। आज भारत का कॉन्फिडेंस अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। हमें क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन के साथ रिफॉर्म कर रहे हैं। जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। हमने इंसॉल्वेंसी लॉ बनाया है। 29 लेबर कोड्स अब 4 सिंपल कोड्स में सिमट चुके हैं। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। और अब यहां रुके नहीं है, भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। हमारे लिए रिफॉर्म्स कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म्स हमारा कन्विक्शन है। साथियों, हजारों वर्ष पहले हमारे वेदों ने हमें एक मंत्र दिया था, संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानताम। आइए आज फिर उस मंत्र को दोहराएं। लेट अस वॉक टुगेदर, लेट अस स्पीक टुगेदर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन अनदर। क्योंकि साथ चलने से हमारी शक्ति बढ़ती है, संवाद से हमारी समझ बढ़ती है, और एक दूसरे को समझने से हम मिलकर बड़ी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। यही है पावर टू एम्पावर। अपनी पावर को केवल अपनी प्रगति तक सीमित न रखना, बल्कि उसे दूसरों के लिए भी नए अवसर बनाए। मुझे विश्वास है कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम का यही मंच इसी भावना को आगे बढ़ने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। एक बार फिर आप सभी पार्टिसिपेंट्स को इस कार्यक्रम के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
1: All right, the Prime Minister there, his address at the 8th annual Bloomberg New Economy Forum taking place in the national capital, where he spoke about India's growth story. He said India's growth is over 7% despite the challenges that the world is currently facing. He also said that India provides stability to the world. And speaking on India's growth story, he spoke about how India supplies talent to the world as well as stability. India made platforms for the world. He says that platforms that are for all. He talked about the banking infrastructure as well, saying India's banking infrastructure is the strongest. So the Prime Minister there addressing the Bloomberg 8th annual, the Bloomberg New Economy Forum. This is the 8th New Economy Forum by Bloomberg being held in the national capital, the keynote address by Prime Minister Modi. So the Prime Minister there speaking about India's achievements and talking about how the India's growth remains over 7% and how India provides stability to the world. Also about how India supplies talent to the world as well. Well, that's it for the moment. We'll slip into a short break. More news and updates on the other side. Do stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
3: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities.

0: और नोबडी इज असिस्टिंग मी फ्रॉम द क्राउड कि चलो निकल जाओ गिर गई हो, तो दे स्टार्टेड शाउटिंग ऑन मी. एंड ये मतलब इट्स वेरी शेमफुल ऑफ देम कि ये लोग मुझे थोड़ा असिस्ट करने के बजाय मुझे ये लोग बैकलैश कर रहे हैं कि आई एम अ
1: ये लोग कौन
0: लायर.
1: है रिचा, जब आप
0: मैं
1: बोलते हो ये लोग कौन है जिन्होंने आपको हेल्प नहीं किया?
0: दे ऑल ऑल द कांग्रेस सपोर्टर्स जो वहां पर खड़े थे, एडवोकेट्स थे सुप्रीम कोर्ट के, और ये सब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, राहुल गांधी की जिंदाबाद के नारे लगा. जब मैं चिल्ला रही हूँ कि राहुल गांधी ने मुझे धकेला है, मेरा माइक गिर गया है, कैमरा ये जो आप देख रहे हो विजुअल में बोल रही हूँ कि कैमरा बंद मत करो, कैमरा क्यों बंद किया, दिखाओ इनको और इनकी
1: बट
0: तस्वीर,
1: रिचा,
0: और
1: इफ़ आई कैन
0: इन्होंने
1: जस्ट
0: वहां पर
1: स्टेप
0: चिल्लाते
1: इन,
0: हैं राहुल गांधी
1: एक मिनट के
0: जिंदाबाद.
1: लिए अगर मैं कुछ बोल सकती हूँ यहाँ पे. अगर आप वीडियो देखेंगे, राहुल गांधी ने ही आपको रास्ता दिखाया था बीच में से. ही सेज गो
0: मैं वो
1: अहेड
0: रास्ता,
1: एंड यू से
0: मैं
1: यस मैं
0: उनको
1: जा रही
0: रास्ता
1: हूँ मैं
0: दिखाया
1: जा रही हूँ.
0: नहीं है.
1: नहीं नहीं रिचा, एक सेकेंड मेरी बात सुनिए. राहुल गांधी उस वीडियो में, मैंने पूरा वीडियो देखा है सुना है, वेर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेज जाइए आप एंड ही मेक्स वे फॉर यू एंड यू से हाँ हाँ मैं जा रही हूँ. देन द कैमरा टर्न्स एट अ 45 डिग्री टू 60 डिग्री एंगल बिकॉज ऑफ द क्राउड इन द एरिया, बिकॉज ऑफ द जॉस्लिंग, सब वहाँ पे पुश करे एक दूसरे को, जिसकी वजह से
0: मैम
1: हमें
0: मैम सॉरी टू इंटरप्ट बट मेरी आवाज बहुत क्लियर है. मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं रुकी हूँ कि मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ. मैंने
1: रिचा
0: बोला है कि
1: मेरे
0: सर
1: पास
0: हम
1: वीडियो
0: जा रहे
1: है
0: हैं.
1: जहाँ
0: मैंने
1: पे
0: बोला
1: आप बोल रहे हैं आई एम लीविंग, डोंट पुश मी, वी
0: मैं
1: हैव द
0: बोली कि
1: वीडियो. आई विल
0: सॉरी सर
1: रिचा
0: मैं
1: स्टे विद मी
0: बता
1: फॉर अ
0: रही हूँ.
1: मोमेंट, आई एम गोइंग टू आस्क माई डायरेक्टर टू जस्ट प्ले आउट दैट वीडियो ऑल्सो विद द नेट अप फॉर आर व्यूअर्स एंड फॉर यू. देर आर डिफरेंट एंगल्स ऑफ द वीडियो, वी हैव वन, लेट जस्ट प्ले इट आउट, देन यू कैन टेल अस व्हाट यू थिंक इफ यू कैन प्ले द वीडियो. That is straight after the incident happened. We're going to play out the video also of where you see Rahul Gandhi and you and that brief interaction between the two of you, where you can see him say, go ahead, he makes way. Then we see that the camera is not on you for a moment because perhaps, like you said, your camera person also fell down. But who are the eyewitnesses when it comes to this incident and your claim? Kaun hai aapke eyewitnesses, Richa? Aapne bahut hi gambhir allegation lagaya hai. The video that we have is unfortunately of that moment not supporting the claim because we don't have the moment of him pushing you. We can't see that push, Richa. So I'm asking you to tell us
0: I'm
1: who are
0: very
1: the
0: sorry,
1: eyewitnesses.
0: और you are the first one जो कह रहा है कि moment of push नहीं है. आर भारत ने मेरी इससे पहले इंटरव्यू करी थी,
1: I am
0: उन्होंने जो
1: not
0: वीडियो
1: saying
0: चलाया है
1: first
0: राहुल
1: one.
0: गांधी
1: I
0: का
1: am
0: हाथ
1: asking you
0: क्लियरली
1: who are
0: निकल
1: the
0: रहा है.
1: eyewitnesses, Richa. It's very
0: मैम
1: important.
0: कैमरा पर रिकॉर्डेड है वो. मैम वो
1: All right, I'm
0: कैमरा
1: going
0: पर
1: to play out the
0: रिकॉर्डेड
1: other clip, Richa. Hold on. Let's play out the other clip where we can see you moving in the crowd with Rahul Gandhi. I can hear Richa is you saying मैं जा रही हूँ. He says go down, मैं जा रही हूँ, धक्का मत मारिए. Is that not your voice?
0: It was my voice. धक्का मत मार, धक्का मत
1: you
0: दीजिए
1: just
0: सर,
1: told
0: मुझे
1: me
0: धक्का मत
1: that
0: दीजिए,
1: you
0: मैं जा
1: didn't
0: रही
1: say
0: हूँ.
1: that. You just told me previously that you said that that wasn't you. That is why.
0: No, वहाँ पे एक और आवाज है राहुल जी. आप प्लीज उसको क्लैरिफाई कीजिए. वहाँ पर एक और आवाज आ रही है राहुल जी ऐसे करके. वो मेरी आवाज नहीं है. बट सर मुझे धक्का मत दीजिए, वो मेरी आवाज है क्योंकि वो मेरे माइक से रिकॉर्ड हुई है.
1: So then,
0: इतना क्लियरली उस
1: just
0: भीड़ में
1: explain
0: अगर
1: this
0: आपकी
1: sequence
0: क्लियर
1: to
0: आवाज
1: us,
0: आ रही है.
1: Richa. I want to give you the opportunity here for clarity on this sequence. जहां से राहुल गांधी आपको बोल रहे गो डाउन, व्हाट हैपेंड, टेल अस.
0: तो उन्होंने मुझे गो डाउन बोला, मौका नहीं दिया जाने का क्योंकि भीड़ थी. तो उन्होंने गो डाउन बोलने के साथ मुझे पे पकड़ा और पुश किया आगे की तरफ. तो मैं जाने लगी और उसी दो से मैम इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 सेकेंड्स. तो आप इसको प्लीज इसको नोट करिएगा.
1: जी
0: उन्होंने मुझे पुश किया, मैं जाने लगी. तब तक मुझे बहुत प्रेशर फील हुआ. तो उसी 2 सेकेंड में मैंने चिल्लाया कि मुझे सर हम धक्का मत दीजिए, हम जा रहे हैं.

0: you have not you seen his hand on my his hands or his hand on my part of hand? Have not
1: and
0: you
1: why
0: seen
1: why do
0: that?
1: You think he had his hand on your shoulder to push you? Was that the intent? Is that what you're saying?
0: Yes, that was that what I felt the power. No, I felt
1: but why would he push you? Chalo, please explain to me. Why would the leader of opposition push you? Please explain to our viewers.
0: Ask him. Please ask this question to him. I also want to know the answer, because I was there proudly standing there to take a small bite from leader of opposition. It was a big opportunity for a journalist, a female journalist like me. I was hoping that my seniors will be proud on me today that I have taken a bite from LOP itself. So I was proudly standing. I was not asking any question. I just wanted that whatever he's saying, it should be recorded. And nothing was recorded because all the
1: yes, also I want to understand from you, Richard, that the Congress is saying that what you're saying, and I'm quoting them here, they're saying this is blatant lies by the journalist. Her sister has approached the BJP with this incident. What is your response to that?
0: Ma'am, my sister lives in this old Rajendranagar area where this hospital is Gangaram. And जहाँ मेरी sister रहती है ना उनके area वो कौन सा है जो तुम्हारे घर के ठीक पीछे रहते हैं राजेश भाटी सर है his vice president from BJP and I don't know because मैं अपने husband के साथ हूँ रात है मुझे treatment के लिए जाना है we are thinking कि हमें गंगाराम जाना चाहिए ये थोड़ा costly hospital है तो कहाँ जाएं तो मेरी sister उनके पास help के लिए गई कि कोई government hospital में हमें aid मिल जाए तो क्योंकि वो मेरे सिस्टर के ठीक घर के पीछे ही रहते हैं एंड ये स्टूडेंट्स हैं तो इनको कभी भी छोटी मोटी इश्यूज होते हैं तो ये बीजेपी के पास जाते हैं क्योंकि यहाँ के जो एमएलए हैं वो भी बीजेपी के हैं और वो क्योंकि वो पास थे घर से
1: आफ्टर बीइंग हर्ट यू कुडंट गो टू अ हॉस्पिटल एंड गेट ट्रीटेड योरसेल्फ
0: मैम मुझे हर्ट होने के साथ तो आई वॉज शॉक्ड आई वॉज प्रोसेसिंग ऑल ऑफ इट आधे घंटे मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठी थी मेरा ये जो नेल है ना ये टूट गया था इसमें से खून आ रहा था मैं रो रही थी वहां पर बैठ के मैं कैमरा माइक सब ठीक कर रही थी मैं एक मिडिल क्लास पर्सन हूँ मेरा फोन टूट गया आईफोन वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था तो मैं ये सब प्रोसेस कर रही थी क्या हुआ क्यों हुआ मैंने अपने सीनियर्स को फोन किया अपने ऑफिस को वन इंडिया को कि सर दिस हैपेंड टू मी उन्होंने बोला कि रिचा शेयर द वीडियो वी आर विद यू वी आर कमिंग इन बिटवीन माई हस्बैंड वॉज सीइंग मी लाइव तो वो लोग मतलब आधा घंटा 40 मिनट लगा वो लोग वहां पर पहुंचे 7:15 के आसपास ये लोग वहां पहुंचे मेरे हस्बैंड पहुंचे मेरी सिस्टर को पता चला तो वो पहुंची और हस्बैंड मुझे लेके आए मैंने बोला कि जो भी नियरेस्ट हो चलो क्योंकि अब मुझे आधे घंटे एक घंटे के बाद मुझे लगा कि मेरे ना पेट में पेन फील हो रहा है हल्का हल्का क्रैम्स जैसा और बाकी जो चोट था ना मैम आप किसी भी डॉक्टर से पूछिएगा गिरने के तुरंत बाद ना आपको चोट नहीं लगता है क्योंकि पता नहीं चलता है क्योंकि आप एंशियस रहते हो तो कुछ कुछ पता चल रहा था
1: आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ट योरसेल्फ इन द क्राउड देयर टू क्विक क्वेश्चंस आल्सो रिचा फ्रॉम यू व्हेन यू फेल देयर वाज अ ह्यूज मीडिया प्रेजेंस देयर व्हाई डिडंट ऑल ऑफ यू कन्फ्रंट राहुल गांधी देयर एंड देन आफ्टर यू फेल गिवन
0: एग्जैक्टली दिस इज माय क्वेश्चन टू
1: राहुल गांधी पुश मी डाउन यू से दैट वी हैव इट ऑन आवर स्क्रीन यू से आई वाज पुश्ड बाय राहुल गांधी सो व्हाई डिडंट द मीडिया द जर्नलिस्ट कम आउट टू सपोर्ट यू एंड कन्फ्रंट राहुल गांधी एट दैट वेरी मोमेंट
0: Exactly, ma'am. This is my question to all the media persons. Why they are sharing that video now? INS has shared the video in which my camera person is clearly being visible. He is thrashed by Rahul Gandhi. So why they didn't stop that time and ask question? This is my question also because I am at hospital. I don't know why they do this. That is why I made a video and put it on my Instagram. You can see very raw video it was. I was crying, but I am a journalist. So you know ki hamara kaam hota hai ki pehle bata de.
1: Two questions. How are you going to take this forward? Will you be taking this forward along with the BJP? Because the BJP has come out in your support. They have taken on Rahul Gandhi. They have said that, his claim of smashing patriarchy falls flat after this incident. Or will you be taking this up independently along with your company?
0: Ma'am, first of all, this is not BJP or this is not any left or right happening, right? It has happened with me. And at this time, Congress has also the opportunity to come with, at least they should ask me, how are you, assist me, whatever. They didn't do anything, right? So, agar main bahut dukhi hoon, ek middle class family se hoon, main bahut dukhi hoon, main bahut famous nahi hoon, aur mere paas us samay jo char log aate hain, to mere liye unke man mein respect to hogi na. Irrespective of BJP, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कौन है मेरे सामने जो आए हैं
1: मैम बीइंग अ जर्नलिस्ट
0: कुछ पुगाए मेरा हाल चाल
1: भंडारी इज हु कम्स

0: opposition Rahul Gandhi?
1: Any allegation, it is all over the internet. I have shared the video, it was recorded. And मैं मुझे राहुल गांधी ने फर्स्टली इस सिचुएशन बहुत आराम से ये हैंडल कर सकते थे मी फर्स्ट और उनके बाद उनके गज ने मुझे धक्का दे दिया. मैं सीडियो पे मेरे कैमरा विजिबल है, येलो कैप्ड पर्सन इज माय कैमरा पर्सन, उसको कोनी मारी है राहुल गांधी ने, मेरे ऊपर गिरा है, सीढ़ियों पे हम गिरे हैं, मैं पेट के बल गिरी हूँ, मेरे पैर में, घुटनों में, नेक में, सब में पेन है. और उसके बाद से मेरे हमारे ऊपर और 4-5 लोग गिर गए हैं. मैं उठी हूँ और क्योंकि मेरी माइक मेरे हाथ से छूट गई है, अभी विजुअल्स भी जो आप चला रहे हैं, मैं यहाँ पर चिल्ला रही हूँ कि मेरी माइक नहीं है, बट मैं मेरी कॉलर माइक है, राहुल गांधी ने मुझे धकेला है, राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया है, मैं चिल्ला रही हूँ ऑल ओवर देयर. और nobody is assisting me from the crowd कि चलो निकल जाओ गिर गई हो तो they started shouting on me and ये मतलब it's very shameful of them कि ये लोग मुझे थोड़ा assist करने के बजाय मुझे ये लोग backlash कर रहे हैं कि I am
0: ये
1: a liar.
0: ये लोग कौन है रिचा, जब आप बोलते हो ये लोग कौन है जिन्होंने आपको help नहीं किया?
1: They all the Congress supporters जो वहाँ पर खड़े थे, advocates थे Supreme Court के, और ये सब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, राहुल गांधी की जिंदाबाद के नारे लगा. जब मैं चिल्ला रही हूँ कि राहुल गांधी ने मुझे धकेला है, मेरा माइक गिर गया है, कैमरा ये जो आप देख रहे हो विजुअल में बोल रही हूँ कि कैमरा बंद मत करो, कैमरा क्यों बंद किया, दिखाओ इनको. और
0: रिचा, इफ आई कैन जस्ट स्टेप इन एक मिनट के लिए, अगर मैं कुछ बोल सकती हूँ यहाँ पे, अगर आप वीडियो देखेंगे, राहुल गांधी ने ही आपको रास्ता दिखाया था बीच में से. ही सेज गो अहेड एंड यू से यस, मैं जा रही हूँ. नहीं रिचा, एक सेकंड मेरी बात सुनिए. राहुल गांधी उस वीडियो में, मैंने पूरा वीडियो देखा है, सुना है, वेयर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेज जाइए आप, एंड ही मेक्स वे फॉर यू एंड यू से हाँ हाँ मैं जा रही हूँ. देन द कैमरा टर्न्स एट 45 डिग्री टू 60 डिग्री एंगल बिकॉज ऑफ द क्राउड इन द एरिया, बिकॉज ऑफ द जॉस्लिंग, सब वहाँ पे पुश कर रहे एक दूसरे को, जिसकी वजह से
1: मैम सॉरी टू इंटरप्ट बट मेरी आवाज बहुत क्लियर है, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकी हूँ कि मैं जा रही हूँ. मैंने बोला
0: मेरे पास वीडियो है जहाँ पे आप बोल रहे हैं आई एम लीविंग, डोंट पुश मी. We have the video. I will, Richa, stay with me for a moment. I'm going to ask my director to just play out that video also with the net up for our viewers and for you. There are different angles of the video. We have one. Let's just play it out, then you can tell us what you think. If you can play the video. That is straight after the incident happened. We're going to play out the video also of where you see Rahul Gandhi and you and that brief interaction between the two of you, where you can see him say, go ahead, he makes way. Then we see that the camera is not on you for a moment because perhaps, like you said, your camera person also fell down. But who are the eyewitnesses when it comes to this incident and your claim? Kaun hai aapke eyewitnesses, Richa? Aapne bahut hi gambhir allegation lagaya hai. The video that we have is unfortunately of that moment not supporting the claim because we don't have the moment of him pushing you. We can't see that push, Richa. So I'm asking you to tell us who are the eyewitnesses.
1: Aur you are the first one jo keh raha hai ki moment of push nahi hai. Aaj Bharat ne meri isse pehle interview kari thi, unhone jo video chalaya hai.
0: Rahul Gandhi ka haath clearly hit. The eyewitnesses, Richa, it's very important.
1: Ma'am, camera pe recorded hai wo. Ma'am,
0: all right, I'm going to play out the other clip, Richa. Hold on. Let's play out the other clip where we can see you moving in the crowd with Rahul Gandhi. Richa is you saying main ja rahi hu, he says go down, main ja rahi hu, dhakka mat mariye. Is that not your voice?
1: It was my voice. धक्का मत मार, धक्का मत दीजिए सर, मुझे धक्का मत दीजिए, मैं जा रही हूँ।
0: You just told me

0: previously that you said that that wasn't you. That is why...
1: No, no. वहाँ पे एक और आवाज़ है राहुल जी. आप please उसको clarify कीजिए. वहाँ पर एक और आवाज़ आ रही है राहुल जी. राहुल जी ऐसे करके वो मेरी आवाज नहीं है. बट सर मुझे धक्का मत दीजिए वो मेरी आवाज है क्योंकि वो मेरे माइक से रिकॉर्ड हुई है. इतना क्लियरली उस भीड़ में अगर आपकी क्लियर आवाज आ रही है.
0: आई वॉन्ट टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी हियर फॉर क्लैरिटी ऑन दिस सीक्वेंस. जहां से राहुल गांधी आपको बोल रहे गो डाउन व्हाट हैपेंड टेल अस.
1: तो उन्होंने मुझे गो डाउन बोला. मौका नहीं दिया जाने का क्योंकि भीड़ थी. तो उन्होंने गो डाउन बोलने के साथ मुझे यहाँ पे पकड़ा और पुश किया आगे की तरफ. तो मैं जाने लगी और उसी दो से मैम इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टू सेकंड्स. तो आप इसको प्लीज इसको नोट करिएगा. उन्होंने मुझे पुश किया मैं जाने लगी. तब तक मुझे बहुत प्रेशर फील हुआ. तो उसी दो सेकंड में मैंने चिल्लाया कि मुझे सर हमें धक्का मत दीजिए हम जा रहे हैं. और सर धक्का मत दीजिए धक्का. मैं गिर गई हूँ.
0: And in that heavy
1: crowd, मैं उठी हूँ मेरा माइक गिर चुका है.
0: इतने लोगों के बीच में जब आप वहाँ खड़े हो यू आर श्योर दैट इट वाज राहुल गांधी हु पुश्ड यू बिकॉज फ्रॉम द लास्ट
1: मैम हिज हैंड क्लियरली विजिबल ऑन द कैमरा.
0: Hand being visible and being pushed to the floor, Richa. No one's questioning your claim. I am asking for you to back your claim with eyewitness accounts and the video. Because in the video that you say, आपको दिख रहा है, he's pushed me. We have no such video here, Richa. We can see that he's giving you way. He puts his arm out.
1: You have not you seen his hand on my his hand on my part of hand. Have not
0: and
1: you
0: why
1: seen
0: do
1: that?
0: You think he had his hand on your shoulder to push you? Was that the intent? Is that what you're saying?
1: Yes, I felt the power. No, I felt that
0: why would he push you?
1: Chalo,
0: please
1: chale
0: explain
1: jao.
0: To me, why would the leader of opposition push you? Please explain to our viewers.
1: Ask him. Please ask this question to him. I also want to know the answer because I was there proudly standing there to take a small bite from leader of opposition. It was a big opportunity for a journalist, a female journalist like me. I was hoping that my seniors will be proud on me today that I have taken a bite from LOP itself. So I was proudly standing. I was not asking any question. I just wanted that whatever he's saying, it should be recorded. And nothing was recorded because all the
0: Yes, also I want to understand from you, Richa, that the Congress is saying that what you're saying, and I'm quoting them here, they're saying this is blatant lies by the journalist. Her sister has approached the BJP with this incident. What is your response to that?
1: Ma'am, my sister lives in this old Rajendranagar area where this hospital is there, Gangaram. And जहाँ मेरी sister रहती है ना उनके area वो कौन सा है जो तुम्हारे घर के ठीक पीछे रहते हैं. राजेश भाटी सर है his vice president from BJP. And I don't know because मैं अपने husband के साथ हूँ. रात है मुझे treatment के लिए जाना है. We are thinking कि हमें गंगाराम जाना चाहिए. ये थोड़ा costly hospital है तो कहाँ जाएं. तो मेरी sister उनके पास help के लिए गई कि कोई government hospital में हमें aid मिल जाए. तो क्योंकि वो मेरे सिस्टर के ठीक घर के पीछे ही रहते हैं एंड ये स्टूडेंट्स हैं तो इनको कभी भी छोटी मोटी इश्यूज होते हैं तो ये बीजेपी के पास जाते हैं क्योंकि यहाँ के जो एमएलए हैं वो भी बीजेपी के हैं और वो क्योंकि वो पास थे.
0: आफ्टर बीइंग हर्ट यू कुडंट गो टू अ हॉस्पिटल एंड गेट ट्रीटेड योरसेल्फ.
1: मैम मुझे हर्ट होने के साथ तो आई वॉज शॉक्ड. आई वॉज प्रोसेसिंग ऑल ऑफ इट. आधे घंटे मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठी थी. मेरा ये जो नेल है ना ये टूट गया था. इसमें से खून आ रहा था. मैं रो रही थी वहां पर बैठ के. मैं कैमरा माइक सब ठीक कर रही थी. मैं एक मिडिल क्लास पर्सन हूँ. मेरा फोन टूट गया आईफोन. वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था. तो मैं ये सब प्रोसेस कर रही थी क्या हुआ क्यों हुआ. मैंने अपने सीनियर्स को फोन किया अपने ऑफिस को वन इंडिया को कि सर दिस हैपेंड टू मी. उन्होंने बोला कि रिचा शेयर द वीडियो वी आर विद यू वी आर कमिंग. इन बिटवीन माय हस्बैंड वाज सीइंग मी लाइव. तो वो लोग मतलब आधा घंटा 40 मिनट लगा वो लोग वहां पर पहुंचे. 7:15 के आसपास ये लोग वहां पहुंचे. मेरे हस्बैंड पहुंचे. मेरी सिस्टर को पता चला तो वो पहुंची और हस्बैंड मुझे लेके आए. मैंने बोला कि जो भी नियरेस्ट हो चलो क्योंकि अब मुझे आधे घंटे एक घंटे के बाद मुझे लगा कि मेरे ना पेट में पेन फील हो रहा है हल्का हल्का क्रैम्स जैसा. और बाकी जो चोट था ना मैम आप किसी भी डॉक्टर से पूछिएगा गिरने के तुरंत बाद ना आपको चोट नहीं लगता है क्योंकि पता नहीं चलता है क्योंकि आप एंशियस रहते हो.
0: भीड़ भी
1: तो कुछ कुछ पता झगड़ा चल रहा था.
0: आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ट योरसेल्फ इन द क्राउड देयर. टू क्विक क्वेश्चंस आल्सो रिचा फ्रॉम यू. व्हेन यू फेल देयर वाज अ ह्यूज मीडिया प्रेजेंस देयर. व्हाई डिडंट ऑल ऑफ यू कन्फ्रंट राहुल गांधी देयर एंड देन आफ्टर यू फेल? Given
1: exactly, how this is my
0: Rahul
1: question
0: Gandhi
1: too.
0: Push me down. You say that we have it on our screen. You say I was pushed by Rahul Gandhi. So why didn't the media, the journalists, come out to support you and confront Rahul Gandhi at that very moment?
1: Exactly, ma'am. This is my question to all the media persons. Why they are sharing that video now? INS has shared the video in which my camera person is clearly being visible. He is thrashed by Rahul Gandhi. So why they didn't stop that time and ask question? This is my question also, because I'm at hospital. I don't know why they do this. That is why I made a video and put it on my Instagram. You can see very raw video it was. I was crying, but I am a journalist. So you know ki hamara kaam hota hai ki pehle bata de.
0: Questions. How are you going to take this forward? Will you be taking this forward along with the BJP? Because the BJP has come out in your support. They have taken on Rahul Gandhi. They have said that, his claim of smashing patriarchy falls flat after this incident. Or will you be taking this up independently along with your company?
1: Ma'am, first of all, this is not BJP or this is not any left or right happening, right? It has happened with me. And at this time, Congress has also the opportunity to come with, at least they should ask me, how are you, assist me, whatever. They didn't do anything, right? So, agar mere, main bahut dukhi hoon, ek middle class family se hoon, main bahut dukhi hoon, main bahut famous nahi hoon, aur mere paas us samay jo char log aate hain, to mere liye unke man mein respect to hogi na. Irrespective of BJP, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कौन है मेरे सामने जो आए हैं.
0: मैम, बीइंग अ जर्नलिस्ट,
1: कुछ कुछ
0: sure
1: पुगाए मेरा हाल चाल.
0: भंडारी इज हु कम्स टू द हॉस्पिटल एंड मीट्स यू.
1: आई नो हिम. आई नो हिम.
0: नो द पीपल फ्रॉम बीजेपी. एनी जर्नलिस्ट वुड नो दीस पीपल.
1: मैम, व्हाट आई एम सेइंग, मेरी सिस्टर सबसे पहले जिन सर के पास गई थी, इज द वाइस प्रेसिडेंट, एंड वो आए, उनको मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो कौन है. मेरी सिस्टर जानती थी और कौन कौन आ रहा है. मैं तो इमरजेंसी में थी ना, पर्दों के पीछे.
0: So कौन कौन आ रहा है, सब खड़े हैं. Are you going to take some action? Are you planning some action?
1: Ma'am, I am sitting with my family. मेरे ऑफिस की टीम भी आ रही है. I am sitting with them and then we'll decide कि आगे क्या करना है, कैसे ले जाना है इसको. पहले तो मैं थोड़ी stable हो जाऊं. I am still at hospital. तो मैं ये सबसे पहले निपट लूं.
0: एंड
1: देन मेरी खुद की वन इंडिया की टीम आ रही है अभी मेरे पास. तो देन विल थिंक.
0: थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू NDTV एंड आल्सो वी विश यू अ वेरी वेरी क्विक रिकवरी. आई होप यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल वेरी सून. थैंक यू. Also, let's bring you the voices from BJP and opposition who have reacted to the claims made by the journalist.
2: आप सबने वो वीडियो देखा कैसे एक फीमेल पत्रकार को राहुल गांधी ने कोनी मारकर हाथ से पकड़कर गिराया और वो फीमेल पत्रकार की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो इस वक्त अस्पताल के अंदर एडमिट है. हम तीनों उनको देखने आए और जब हमने उनसे बात करी, उन्होंने हमें बताया कि खुद राहुल गांधी ने उनके कंधे से पकड़कर उनको ऐसे खींचा और नीचे ज़मीन पर फेंका और वो उनसे सवाल भी नहीं पूछ रही थी. वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इस प्रोटेस्ट को कवर कर रही थी. और सोचिए कितने निर्मम है ये कांग्रेसी कि किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जब वो फीमेल पत्रकार जमीन पे राहुल गांधी द्वारा फेंकी गई और गिरी, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हाथ नहीं दिया और वो खुद उस फीमेल पत्रकार को पर लांछन लगाना चाह रहे थे. स्मैश द पेट्रियार्की की बात करने वाले राहुल गांधी ने आज एक गुंडो जैसा व्यवहार किया है.
3: शाम 10 बजे मेरे संज्ञान में आया कि एक महिला पत्रकार रिचा प्राशर जी के साथ बदसलूकी की गई है राहुल गांधी जी द्वारा. तो तुरंत प्रभाव से स्थानीय विधायक होने के नाते मैं हम यहाँ आए. हमारे साथ प्रदीप भंडारी जी, राजेश भाटिया जी और स्थानीय मंडल अध्यक्ष थे. हम आए, हमने उनका हाल चाल पूछा, उनको एडमिट कराया और उनकी स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब इतनी शर्मनाक हरकत की गई है राहुल गांधी जी द्वारा. और मैं इसकी कड़ी निंदा भी करता हूँ कि जो व्यक्ति स्मैश द पेट्रियार्की की बात करते हैं, वो एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो सिर्फ अपना काम कर रही थी. और एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि अगर कोई पत्रकार उनसे कुछ पूछ रहा है तो उनको उस चीज़ का जवाब देना चाहिए, ना कि उनको मैन हैंडल करके ज़मीन पर गिराना चाहिए.
4: बताया जाए कहाँ की ये वीडियो है? सुप्रीम कोर्ट का वीडियो है और कौन पत्रकार थे, उसके हाथ में कौन से, वो बताएं जरा सा। वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वहाँ पर, एक तो उस परिसर में राहुल गांधी जी जब अंदर गए तो काफ़ी भीड़ हो गई, कुछ लोग अंदर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयास किए, उनके सिक्योरिटी पर्सनल जो थे उन्होंने रोका ऐसे किसी को। और ये मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी इस जनसैलाब को देख के बहुत तरह के इस प्रकार के आरोप लगाएंगे और उन्हें चिंता आ गई कि उनकी उनकी जमीन खिसक रही है, ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ज्ञानेश कुमार ना जवाब दे रहे हैं ना कोई जिम्मेवारी फिक्स हो रही है इस प्रकार की।

0: ये है जंतर मंतर, यहाँ हम लोग अंदर थे और अब हमें डिटेन करके ले जा रहा
1: है साथियों, हमें जंतर मंतर से डिटेन।
2: देखिए
1: मेरे साथ
2: सब लोग हैं यहाँ पे।
3: वोल्टेज जंतर मंतर हैज बीन ब्रीच, इस्तीफा ज्ञानेश कुमार का जंतर मंतर पर ही होगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो।
2: देखिए होम मिनिस्ट्री कौन होती है, हमारा जंतर मंतर ले जाने वाली, जंतर मंतर डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड वी विल गेट द रेजिग्नेशन ऑफ ज्ञानेश कुमार फ्रॉम जंतर मंतर। दोस्तों सभी को आना पड़ेगा जंतर मंतर, दिल्ली चलो वाला नारा अभी भी हमारा है, ये प्रोटेस्ट होके रहेगा, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होगा और जंतर मंतर पे ही होगा। क्या लोग कंसल्ट किए गए थे जब जंतर मंतर डीनोटिफाई हुआ था, किसी से कंसल्ट नहीं किया, ये दमनकारी सरकार ने ऐसे ही हटा दिया जंतर मंतर। पहले इंडिया गेट ले गए, उसके बाद बोट हाउस ले गए, फिर अब जंतर मंतर ले गए, तो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक भी प्रोटेस्ट साइट नहीं है, ऐसे लोकतंत्र नहीं चल सकता।
3: जंतर मंतर हैज बीन ब्रीच्ड, इनके किले को भेद दिया है हमने और आज जो किया है वो टेलर है। आज 10 घुसे थे, कल 1000 घुसेंगे, 10,000 लोग घुसेंगे। ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा और इस्तीफा हम लोग जंतर मंतर पर ही लेंगे, जो उखाड़ रहे उखाड़ लो। भारत माता की, भारत माता की। कॉकरोचेस रुकने वाले नहीं है मोदी जी, कॉकरोचेस ज्ञानेश कुमार को लेकर ही दिल्ली से जाएंगे,
4: लेके रहेंगे। ना किसी का बाप पे रुका था ना रुकेगा, इनकलाब जिंदाबाद।
5: The Delhi Chief Electoral Officer says around 20 lakh voter discrepancy cases have been resolved under the ongoing special intensive revision of electoral rolls. Out of the 33 lakh voters who received notices over logical discrepancies or failure to map their names to the 2002 electoral rolls, around 20 lakh cases have been addressed. The CEO's office has assured that no eligible voter will be left out of the electoral roll. Special camps will also be held on the 18th and 25th of this month to help voters resolve their issues. The claims and objections window will remain open till the 30th of October, with the final electoral roll scheduled to be published on the 4th of December. Sumaiya has launched a scathing attack on actor Imran Khan over his participation in the Cockroach Janata Party protests against the SIR process in Mumbai. BJP leader has accused Imran of political extremism, claiming he is attempting to incite anarchy. He has demanded Imran's immediate arrest and deportation, alleging a well-planned conspiracy targeting actor Shabana Azmi and Javed Akhtar as well. Sumaiya claimed they were speaking the same language and alleged that the protests could be funded from Pakistan. Imran was detained during the October 10th protest in Mumbai and was later released. Shabana Azmi had attended the CJP protest on the 2nd of this month.
6: Khan sahab gaye kuch dino se Bharat mein rehkar jis prakar se political extremism fanaticism dikha rahe hain wo Hindustan ke nagrik bardasht nahi kar sakte. वो अमेरिकन नागरिक है, ओसीआई कार्ड है और उसका उसने दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। हमने आज पुलिस को सभी प्रूफ एविडेंसेस दिए हैं। वो जिस प्रकार से उस दिन आंदोलन में भाषणबाजी कर रहे थे, उसके पहले भी कमेंट की, एक मुस्लिम है इमरान खान, यानी उसको इस प्रकार से बात करने का अधिकार है, यह गलत फहमी है उनकी।
5: A scuffle reportedly preceded the hit and run incident in Bhubaneswar in Odisha. CCTV footage from the area captured the altercation and the subsequent collision. CCTV footage shows a scuffle involving Soumya Rath and others before the incident. CCTV shows a car rammed into 7 people in Bhubaneswar, leaving 3 injured. The footage captures how there was a deliberate attempt to crash the vehicle not once but twice. The accused, identified as Rath, has been arrested. Police are investigating the circumstances leading up to this collision, including claims of intoxication. A lifetime in the sky is a passion that never fades. Air Chief Marshal AP Singh has taken his final fighter sortie at the controls of India's indigenous Tejas, flying alongside friendly foreign country aircraft and the Surya Kiran aerobatic team during Exercise Tarang Shakti 2026. This was more than just a flight. It was a tribute to a life devoted to the skies and service to the nation.
7: A leader. A fighter pilot. Leading from the front. Always at the controls, at the helm. One last chapter. Same unwavering spirit. Aviator by instinct, leader by example. Precision. Discipline. Excellence. Leading from the front, flying in partnership. Different fleets. Shared purpose. Some call it a sortie. For a fighter pilot, it is a way of life. The mission continues. The legacy endures. Some journeys are measured in hours. A pilot's legacy is measured in the skies he has commanded.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
2: ये है एक लेगेसी।
3: यू नो डिजाइन्स कितने लाख से भी ज्यादा डूट
4: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
5: एक परिवार अटूट भरोसा।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
10: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: Okay, we have some news coming in through sources from within the Delhi police. Now, what the sources are telling NDTV is a campaign regarding the protests in Delhi is being run by certain Pakistani social media handles. False narratives and rumors against India are being spread. The Delhi police's IFSO unit has registered more than 4 FIRs in this regard. Cases have been registered against social media handles that are propagating false narratives and disrupting the atmosphere in the country. An anti-India sentiment is being fueled from across the border via social media, and several Pakistani social media accounts have been deactivated. On the 10th of October, false reports claiming that people had died during the protests were posted by various Pakistani social media handles. That's the latest that we have for you. There is a claim through sources within the Delhi police that is being made that the campaign is an anti-India campaign that is being fueled by supporters of Pakistan, and a false narrative and rumors are also being spread against India. Also, cases have been registered against social media handles that are propagating false narratives. The aim, according to sources, is to spread false narratives across the country and an anti-India sentiment. Mukesh, my colleague, now joins me live. Mukesh, what are the details you can share with us? This is worrying, but we're also being told through your sources in the Delhi police that several Pakistani social media accounts have now been deactivated.
1: देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली में लगातार अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट जारी है, जिसमें सीजीपी के अलावा जो इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट है, कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, लगातार ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से लगातार एक झूठा नरेटिव फैलाया जा रहा है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें कई लोगों की मौत हो गई है। कल ही जिस तरह से इंडिया गठबंधन का जो मार्च हुआ उसको लेकर भी एक झूठा नरेटिव और अफवाहें फैलाई गई, जिसमें ये कहा गया कि 10 अक्टूबर के प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों की मौत हो गई। तो पाकिस्तान के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से लगातार इस तरह का नरेटिव, इस तरह की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की इफ्सो यूनिट, यानी कि जो दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट होती है, उसने 4 केस दर्ज किए हैं और कई सारे पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको डीएक्टिवेट भी करवा दिया है। लेकिन लगातार इस तरह के सोशल मीडिया हैंडल हैं पाकिस्तान से, जिनसे

0: भारत के खिलाफ लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है। जब से सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक लगातार इस तरह का जो कैंपेन है वो चल रहा है, जिसके तहत लगातार झूठी खबरें और झूठे पोस्ट डाले जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में प्रोटेस्ट के दौरान कई लोगों की मौत हो गई है। तो दिल्ली पुलिस की नज़र लगातार इन सोशल मीडिया हैंडल पर है और चार नए केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए हैं, चार नई FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल को डीएक्टिवेट किया गया है और लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से एक झूठा नैरेटिव भारत के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसको लेकर हमारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ लगातार अलर्ट मोड पर हैं। जी
1: Alright, Mukesh, thanks for that update. We'll keep you posted on the developments on that claim being made through sources within the Delhi police of a Pakistan angle to the unrest that they're trying to create across the country. Moving on now, a political row has erupted over a video shared by the BJP allegedly showing Rahul Gandhi, the leader of opposition, pushing a pregnant journalist during yesterday's protest. The journalist, her name is Richa Prasher, claimed that Rahul Gandhi pushed her, causing her to fall on her knees. She also alleges that she was thrashed while doing her job. In a video shared by BJP, she's being heard saying, and I quote her here, "Rahul Gandhi pushed me down and I fell on my knees." The BJP has sharply attacked Rahul Gandhi, accusing him of hypocrisy over his stand on women's rights and alleging that he pushed the journalist. The Congress, however, has rejected the charge. Congress leader Alka Lamba has called the video manufactured propaganda and questioned the circumstances surrounding the journalist's coverage of that protest.
2: मैं अपने घुटने के बल गिरूं, मेरा माइक मेरे हाथ में नहीं है, बट मेरा माइक मेरे कॉलर पे है। आई कांट कीप पेशेंस, दिस इज माय जॉब। आप लोग मेरे से ये चमचागिरी मत कीजिए। क्या हुआ, स्टार्ट क्यों नहीं कैमरा? चमचागिरी किया जा रहा है, दे थ्रैश द फीमेल
3: जर्नलिस्ट।
1: And some time back I spoke with Richa, who is still in hospital. Here's that entire conversation. Richa Prasher live with me. Richa, firstly, thank you for speaking to us from the hospital at this point. I want to understand how you are feeling now.
4: Ma'am, I'm on painkillers, so feeling better.
1: All right. Could you tell us what happened yesterday, Richa? We want to understand and get a detailed account from you, your version of the incident where you've made a very serious allegation against the leader of opposition, Rahul Gandhi.
4: Any allegation, it is all over the internet. I have shared the video, it was recorded, and मैं मुझे राहुल गांधी ने फर्स्टली इस सिचुएशन को बहुत आराम से ये हैंडल कर सकते थे, मी फर्स्ट, और उनके बाद उनके घर ने मुझे धक्का दे दिया। मैं सीडियो पे, मेरे कैमरा विजिबल है, येलो कैप्ड पर्सन इज माय कैमरा पर्सन, उसको कोनी मारी है राहुल गांधी ने, मेरे ऊपर गिरा है, सीढ़ियों पे हम गिरे हैं, मैं पेट के बल गिरी हूँ, मेरे पैर में, घुटनों में, नेक में, सब में पेन है, और उसके बाद से मेरे हमारे ऊपर और चार पांच लोग गिर गए हैं। मैं उठी हूँ और क्योंकि मेरी माइक मेरे हाथ से छूट गई है, अभी विजुअल्स भी जो आप चला रहे हैं, मैं यहाँ पर चिल्ला रही हूँ कि मेरी माइक नहीं है, बट मैं मेरी कॉलर माइक है, राहुल गांधी ने मुझे धकेला है, राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया है, मैं चिल्ला रही हूँ ऑल ओवर देयर, और nobody is assisting me from the crowd कि चलो निकल जाओ, गिर गई हो तो, they started shouting on me, and ये मतलब it's very shameful of them कि ये लोग मुझे थोड़ा assist करने के बजाय मुझे ये लोग backlash कर रहे हैं कि I am
1: ये
4: a liar।
1: ये कौन है रिचा, जब आप बोलते हो ये लोग कौन है जिन्होंने आपको help नहीं किया?
4: They all the Congress supporters जो वहाँ पर खड़े थे, advocates थे सुप्रीम कोर्ट के, और ये सब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, राहुल गांधी की जिंदाबाद के नारे लगा। जब मैं चिल्ला रही हूँ कि राहुल गांधी ने मुझे धकेला है, मेरा माइक गिर गया है, कैमरा, ये जो आप देख रहे हो विजुअल, मैं बोल रही हूँ कि कैमरा बंद मत करो, कैमरा क्यों बंद किया, दिखाओ इनको। और
1: ऋचा, इफ आई कैन जस्ट स्टेप इन एक मिनट के लिए, अगर मैं कुछ बोल सकती हूँ यहाँ पे, अगर आप वीडियो देखेंगे, राहुल गांधी ने ही आपको रास्ता दिखाया था बीच में से, ही सेज गो अहेड एंड यू से यस मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, नहीं नहीं

0: अच्छा एक सेकंड मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी उस वीडियो में, मैंने पूरा वीडियो देखा है, सुना है, वेयर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेज जाइए आप, एंड ही मेक्स वे फॉर यू एंड यू से हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, देन द कैमरा टर्न्स एट अ 45 डिग्री टू 60 डिग्री एंगल बिकॉज ऑफ द क्राउड इन द एरिया, बिकॉज ऑफ द जॉस्लिंग, सब वहाँ पे पुश कर रहे एक दूसरे को, जिसकी वजह से
1: मैम सॉरी टू इंटरप्ट बट मेरी आवाज बहुत क्लियर है, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकी हूँ कि मैं जा रही हूँ, मैंने बोला
0: है मेरे पास वीडियो है जहाँ पे आप बोल रहे हैं आई एम लीविंग, डोंट पुश मी, वी हैव द वीडियो, आई विल रिचा स्टे विद मी फॉर अ मोमेंट, आई एम गोइंग टू आस्क माय डायरेक्टर टू जस्ट प्ले आउट दैट वीडियो आल्सो विद द नेटअप फॉर आवर व्यूअर्स एंड फॉर यू, देयर आर डिफरेंट एंगल्स ऑफ द वीडियो, वी हैव वन, लेट्स जस्ट प्ले इट आउट, देन यू कैन टेल अस व्हाट यू थिंक, इफ यू कैन प्ले द वीडियो. Straight after the incident happened, we're going to play out the video also of where you see Rahul Gandhi and you and that brief interaction between the two of you, where you can see him say, go ahead, he makes way. Then we see that the camera is not on you for a moment because perhaps, like you said, your camera person also fell down. But who are the eyewitnesses when it comes to this incident and your claim? Kaun hai aapke eyewitnesses, Richa? आपने बहुत ही गंभीर एलिगेशन लगाया है. द वीडियो दैट वी हैव इज अनफॉर्चुनेटली ऑफ दैट मोमेंट नॉट सपोर्टिंग द क्लेम बिकॉज वी डोंट हैव द मोमेंट ऑफ हिम पुशिंग यू, वी कांट सी दैट पुश, रिचा. सो आई एम आस्किंग यू टू टेल अस,
1: और यू आर द फर्स्ट वन जो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ पुश नहीं है. आर भारत ने मेरी इससे पहले इंटरव्यू करी थी, उन्होंने जो वीडियो चलाया है, राहुल गांधी का हाथ क्लियरली
0: दिख रहा है. आई विटनेसेस, रिचा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
1: मैम कैमरा पर रिकॉर्डेड है वो.
0: All right, I'm going to play out the other clip, Richa. Hold on. Let's play out the other clip where we can see you moving in the crowd with Rahul Gandhi. Richa is you saying main ja rahi hu, he says go down, main ja rahi hu, dhakka mat mariye, is that not your voice?
1: It was my voice, dhakka mat mar, dhakka mat dijiye sir, mujhe dhakka mat diye, main ja rahi hu.
0: You just told me that, you just told me previously that you said that that wasn't you, that is why.
1: No, wahan pe ek aur awaaz hai Rahul ji, aap please usko clarify kijiye, wahan par ek aur awaaz aa rahi hai, Rahul ji aise karke, wo meri awaaz nahi hai. बट सर मुझे धक्का मत दीजिए, वो मेरी आवाज है क्योंकि वो मेरे माइक से रिकॉर्ड हुई है. इतना क्लियरली उस भीड़ में अगर आपकी क्लियर आवाज आ रही है.
0: I want to give you the opportunity here for clarity on this sequence. जहां से राहुल गांधी आपको बोल रहे गो डाउन, व्हाट हैपेंड, टेल अस.
1: तो उन्होंने मुझे गो डाउन बोला, मौका नहीं दिया जाने का क्योंकि भीड़ थी. तो उन्होंने गो डाउन बोलने के साथ मुझे यहाँ पे पकड़ा और पुश की आगे की तरफ, तो मैं जाने लगी. और उसी दो से मैम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 सेकंड्स, तो आप इसको प्लीज इसको नोट करिएगा. उन्होंने मुझे पुश किया, मैं जाने लगी, तब तक मुझे बहुत प्रेशर फील हुआ. तो उसी 2 सेकंड में मैंने चिल्लाया कि मुझे सर हमें धक्का मत दीजिए, हम जा रहे हैं, और सर धक्का मत दीजिए, धक्का, मैं गिर गई हूँ.
0: And in that heavy crowd,
1: फिर मैं उठी हूँ, मेरा माइक गिर चुका है.
0: इतने लोगों के बीच में जब आप वहाँ खड़े हो, you are sure that it was Rahul Gandhi who pushed you, because from the last,
1: ma'am, his hand clearly visible on the camera.
0: Hand being visible and being pushed to the floor, Richa. No one's questioning your claim. I am asking for you to back your claim with eyewitness accounts and the video, because in the video that you say आपको दिख रहा है he's pushed me, we have no such video here, Richa. We can see that he's giving you way. He puts his arm out.
1: You have not you seen his hand on my his hand on my part of hand. Have not you seen that?
0: And why do you think he had his hand on your shoulder to push you? Was that the intent? Is that what you're saying?
1: Yes, that was what I felt the power. No, I felt ki wo,
0: Richa, why would he push you? Chalo, please explain to me, why would the leader of opposition push you? Please explain to our viewers.
1: Ask him, please ask this question to him. I also want to know the answer.

0: because I was there proudly standing there to take a small bite from leader of opposition. It was a big opportunity for a journalist, a female journalist like me. I was hoping that my seniors will be proud on me today that I have taken a bite from LOP itself. So I was proudly standing. I was not asking any question. I just wanted that whatever he's saying, it should be recorded. And nothing was recorded because all the...
1: Yes, also I want to understand from you, Richa, that the Congress is saying that what you're saying, and I'm quoting them here, they're saying this is blatant lies by the journalist. Her sister has approached the BJP with this incident. What is your response to that?
0: Ma'am, my sister lives in this old Rajendranagar area where this hospital is Gangaram. And जहाँ मेरी sister रहती है ना उनके area वो कौन सा है जो तुम्हारे घर के ठीक पीछे रहते हैं
2: राजेश
0: भाटी सर है vice president from BJP and I don't know because मैं अपने husband के साथ हूँ रात है मुझे treatment के लिए जाना है we are thinking कि हमें गंगाराम जाना चाहिए ये थोड़ा costly hospital है तो कहाँ जाएं तो मेरी sister उनके पास help के लिए गई कि कोई government hospital में हमें aid मिल जाए तो क्योंकि वो मेरे सिस्टर के ठीक घर के पीछे ही रहते हैं एंड ये स्टूडेंट्स हैं तो इनको कभी भी छोटी मोटी इश्यूज होते हैं तो ये बीजेपी के पास जाते हैं क्योंकि यहाँ के जो एमएलए हैं वो भी बीजेपी के हैं और वो क्योंकि वो पास थे घर से
1: आफ्टर बीइंग हर्ट यू कुडन गो टू अ हॉस्पिटल एंड गेट ट्रीटेड योरसेल्फ
0: मैम मुझे हर्ट होने के साथ तो आई वॉज शॉक्ड आई वॉज प्रोसेसिंग ऑल ऑफ इट आधे घंटे मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठी थी मेरा ये जो नेल है ना ये टूट गया था इसमें से खून आ रहा था मैं रो रही थी वहां पर बैठ के मैं कैमरा माइक सब ठीक कर रही थी मैं एक मिडिल क्लास पर्सन हूँ मेरा फोन टूट गया आईफोन वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था तो मैं ये सब प्रोसेस कर रही थी क्या हुआ क्यों हुआ मैंने अपने सीनियर्स को फोन किया अपने ऑफिस को वन इंडिया को कि सर दिस हैपन टू मी उन्होंने बोला कि रिचा शेयर द वीडियो वी आर विद यू वी आर कमिंग इन बिटवीन माई हस्बैंड वॉज सीइंग मी लाइव तो वो लोग मतलब आधा घंटा 40 मिनट लगा वो लोग वहां पर पहुंचे 7:15 के आसपास ये लोग वहां पहुंचे मेरे हस्बैंड पहुंचे मेरी सिस्टर को पता चला तो वो पहुंची और हस्बैंड मुझे लेके आए मैंने बोला कि जो भी नियरेस्ट हो चलो क्योंकि अब मुझे आधे घंटे एक घंटे के बाद मुझे लगा कि मेरे ना पेट में पेन फील हो रहा है हल्का हल्का क्रैम्स जैसा और बाकी जो चोट था ना मैम आप किसी भी डॉक्टर से पूछिएगा गिरने के तुरंत बाद ना आपको चोट नहीं लगता है क्योंकि पता नहीं चलता है क्योंकि आप एंशियस रहते हो तो कुछ कुछ पता चल रहा था
1: आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ट योरसेल्फ इन द क्राउड देयर टू क्विक क्वेश्चंस आल्सो रिचा फ्रॉम यू व्हेन यू फेल देयर वाज अ ह्यूज मीडिया प्रेजेंस देयर व्हाई डिडंट ऑल ऑफ यू कन्फ्रंट राहुल गांधी देयर एंड देन आफ्टर यू फेल गिवन
0: एग्जैक्टली दिस इज माय क्वेश्चन टू
1: राहुल गांधी पुश मी डाउन यू से दैट वी हैव इट ऑन आवर स्क्रीन यू से आई वाज पुश्ड बाय राहुल गांधी सो व्हाई डिडंट द मीडिया द जर्नलिस्ट कम आउट टू सपोर्ट यू एंड कन्फ्रंट राहुल गांधी एट दैट वेरी मोमेंट
0: Exactly, ma'am. This is my question to all the media persons. Why they are sharing that video now? INS has shared the video in which my camera person is clearly being visible. He is thrashed by Rahul Gandhi. So why they didn't stop that time and ask question? This is my question also because I'm at hospital. I don't know why they do this. That is why I made a video and put it on my Instagram. You can see very raw video it was. I was crying, but I am a journalist. So you know कि हमारा काम होता है कि पहले बता दे.
1: Two more questions. How are you going to take this forward? Will you be taking this forward along with the BJP? Because the BJP has come out in your support. They have taken on Rahul Gandhi. They have said that his claim of smashing patriarchy falls flat after this incident. Or will you be taking this up independently along with your company?
0: Ma'am, first of all, this is not BJP or this is not any left or right happening, right? It has happened with me. And at this time, Congress has also the opportunity to come with, at least they should ask me, how are you, assist me, whatever. They didn't do anything, right? So, agar main bahut dukhi hoon, ek middle class family se hoon, main bahut dukhi hoon, main bahut famous nahi hoon, aur mere paas us samay jo char log aate hain, to mere liye unke man mein respect to hogi na. Irrespective of BJP, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कौन है मेरे सामने जो आए हैं
1: मैम बीइंग अ
0: बस कुछ कुछ पुगाए मेरा हाल चाल
1: भंडारी इज हु कम्स टू द हॉस्पिटल एंड मीट्स यू
0: आई नो हिम आई नो हिम
1: नो द पीपल फ्रॉम बीजेपी एनी जर्नलिस्ट वुड नो दीस पीपल
0: मैम व्हाट आई एम सेइंग मेरी सिस्टर सबसे पहले जिन सर के पास गई थी इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड वो आए उनको मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो कौन है मेरी सिस्टर जानती थी और कौन कौन आ रहा है मैं तो इमरजेंसी में थी ना पर्दों के पीछे
1: तो कौन कौन आ रहे हैं, सब खड़े हैं, आर यू गोइंग टू टेक सम एक्शन, आर यू प्लानिंग सम एक्शन?
0: मैम आई एम सिटिंग विद माय फैमिली, मेरे ऑफिस की टीम भी आ रही है, आई एम सिटिंग विद देम एंड देन विल डिसाइड कि आगे क्या करना है, कैसे ले जाना है इसको. पहले तो मैं थोड़ी स्टेबल हो जाऊं, आई एम स्टिल एट हॉस्पिटल, तो मैं ये सबसे पहले निपट लूं एंड देन मेरी खुद की वन इंडिया की टीम आ रही है अभी मेरे पास, तो देन विल थिंक.
1: थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी एंड आल्सो वी विश यू अ वेरी वेरी क्विक रिकवरी. आई होप यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल वेरी सून. थैंक यू. लेट्स गेट योर रिएक्शंस फ्रॉम द बीजेपी एंड ऑपोजिशन ओवर द जर्नलिस्ट क्लेम.
2: बिल्कुल, ये जो तस्वीरें दिख रही है, निश्चित रूप से इस तस्वीर को देख के हम सब भी हैरान हैं कि ये कैसा प्रदर्शन, ये कैसा व्यवहार कि पहले दिल्ली पुलिस महिला पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके बाद कल जिस तरह एक जर्नलिस्ट के साथ, महिला जर्नलिस्ट के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया गया, निश्चित रूप से ये देख के शर्म आती है कि ये कैसे नेता प्रतिपक्ष है.
3: आप सबने वो वीडियो देखा कैसे एक फीमेल पत्रकार को राहुल गांधी ने कोनी मारकर हाथ से पकड़कर गिराया और वो फीमेल पत्रकार की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो इस वक्त अस्पताल के अंदर एडमिट है. हम तीनों उनको देखने आए और जब हमने उनसे बात करी, उन्होंने हमें बताया कि खुद राहुल गांधी ने उनके कंधे से पकड़कर उनको ऐसे खींचा और नीचे ज़मीन पर फेंका और वो उनसे सवाल भी नहीं पूछ रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इस प्रोटेस्ट को कवर कर रही थी. और सोचिए कितने निर्मम है ये कांग्रेसी कि किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जब वो फीमेल पत्रकार ज़मीन पर राहुल गांधी द्वारा फेंकी गई और गिरी, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हाथ नहीं दिया और वो खुद उस फीमेल पत्रकार को पर लांछन लगाना चाह रहे थे. स्मैश द पेट्रियार्की की बात करने वाले राहुल गांधी ने आज एक गुंडो जैसा व्यवहार किया है.
4: शाम 10 बजे मेरे संज्ञान में आया कि एक महिला पत्रकार रिचा प्राशर जी के साथ बदसलूकी की गई है राहुल गांधी जी द्वारा, तो तुरंत प्रभाव से स्थानीय विधायक होने के नाते मैं हम यहाँ आए. हमारे साथ प्रदीप भंडारी जी, राजेश भाटिया जी या स्थानीय मंडल अध्यक्ष थे. हम आए, हमने उनका हाल चाल पूछा, उनको एडमिट कराया और उनकी स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब इतनी शर्मनाक हरकत की गई है राहुल गांधी जी द्वारा. और मैं इसकी कड़ी निंदा भी करता हूँ कि जो व्यक्ति स्मैश द पेट्रियार्की की बात करते हैं वो एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो सिर्फ अपना काम कर रही थी. और एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि अगर कोई पत्रकार उनसे कुछ पूछ रहा है तो उनको उस चीज़ का जवाब देना चाहिए, ना कि उनको मैन हैंडल करके ज़मीन पर गिराना चाहिए.
5: ये बताया जाए कहाँ की ये वीडियो है, सुप्रीम कोर्ट का वीडियो है और कौन पत्रकार थे उसके हाथ में कौन से, वो बताएं जरा सा. वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वहाँ पर एक तो उस परिसर में राहुल गांधी जी जब अंदर गए तो काफ़ी भीड़ हो गई, कुछ लोग अंदर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयास किए, उनके सिक्योरिटी पर्सनल जो थे उन्होंने रोका ऐसे किसी को. और ये मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी इस जनसैलाब को देख के बहुत तरह के इस प्रकार के आरोप लगाएंगे और उन्हें चिंता आ गई कि उनकी उनकी जमीन खिसक रही है, ये एक बड़ा फैक्टर है. लेकिन सवाल ये नहीं है कि ज्ञानेश कुमार ना जवाब दे रहे हैं ना कोई जिम्मेवारी फिक्स हो रही है, इस प्रकार की चीज़ें आती है तो ये विषयांतर करने की इनकी प्रवृत्ति रही है.
6: Videos can be made into anything. The conspiracies can be hatched. The scripting can be done. But that video itself is very clear that Rahul Gandhiji was trying to protect her. That when somebody else was going behind someone. So it is not the case that Rahul Gandhi yesterday itself in that whole crowd, the way Rahul Gandhi was protecting Neha Bora as a little sister. So these are what we all feel about Rahul Gandhi, not just one day or yesterday or day before yesterday. He has always maintained a very respectful approach towards women and also for their empowerment.
1: The leader of opposition, Rahul Gandhi, has invited India Bloc MPs and members of the civil society and student organizations for tea at his residence. Rahul Gandhi is likely to plan a protest after the tea meeting with opposition leaders. From street fight to the Supreme Court, the SIR showdown has now clearly escalated. 11 MPs from the India Bloc had filed a plea in the top court yesterday. The opposition's plea in the Supreme Court seeks a stay on the ongoing SIR exercise and a Supreme Court audit of voter deletions. It has also sought an independent probe led by a former Supreme Court judge. The Supreme Court, however, will not be hearing Rahul's plea today, since sources said that there were 40

0: her, but we seem to have lost the link there with Aishwarya for a moment. We will try and reconnect with him. But the latest is that the BJP women MPs are intensifying the stir against Rahul Gandhi, as well as the Congress MP, who is facing allegations of sexual misconduct. They are on their way to meet with the President of India, Draupadi Murmu, and take this further. They've also questioned the silence of Rahul Gandhi over the charges against MP Akhoy Jam. Aishwarya, I believe you are with some of these women MPs who are headed to the Rashtrapati Bhavan at the moment. Just take us through what their plan is. I believe they want to take this issue to the President of India and demand action.
1: That's right. We are on board the bus, which in few minutes will be heading towards the Rashtrapati Bhavan, where the women MPs from the Bharatiya Janata Party will be meeting the President of India and will be submitting the memorandum against the Manipur Congress MP. Certainly, the BJP MPs here on board will be taking the memorandum to the President of India, and they are alleging that it is the Congress leader Rahul Gandhi who had been silent over the entire issue. Perhaps he speaks about smashing the patriarchy, but he doesn't speak about the allegations against his own Congress MP. There are several MPs with me. Ma'am, you're heading towards the Rashtrapati Bhavan. The memorandum that you are going to submit demands the resignation, the expulsion of the Congress MP. What demands are from leader of opposition Rahul Gandhi as far as BJP?
2: There's one thing that JNU 11 students have complained against. They have said that they have been molested. There was an inquiry set which has been proven. It is very sad that when Rahul Gandhi comes out on speeches on the mic, he says smash the patriarchy, but he's never standing for the women, he's never standing for the girls. We saw how badly the police workers were treated at their rallies. We also saw how badly the reporter yesterday was treated. What is he talking about? What smash the patriarchy? He's not being able to stand for the girls of the country. Priyanka Gandhi is saying, ladki hoon, lad sakti hoon. Aaj chuppi kyun saathi hui hai? Why is she quiet today? This is really sad. This is shameful. And that's the reason that BJP MPs are going to our honorable president. We have a memorandum which we will discuss once it's given. But yes, something needs to be done about this, because you cannot just talk for votes. You have to talk for what is right. It's high time that Congress stood with the right and just not kept quiet when the right time comes. Thank you.
1: It is Mahila Mocha president also. So is traveling and on board the bus. Ma'am, aap log ek kyapan lekar ja rahe hain Rashtrapati ke paas. Kya kuch maange hain Rahul Gandhi ke khilaf? Aap lagatar bol rahe hain ki wo baat nahi kar rahe hain, na unko expel kar rahe hain. Aapki
3: राहुल गांधी महिला सम्मान की बात करते हैं, वो सिर्फ नारे तक सीमित है. उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है, क्योंकि आपने देखा है कि जेएनयू में जिस तरह से दुर्भाग्यजनक घटना हुआ है, गुरु शिष्य की परंपरा को उनके मणिपुर के कांग्रेस के सांसद और उस कॉलेज के प्रोफेसर ने कलंकित किया है. इसकी हम घोर निंदा करते हैं. और आए दिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह से, चाहे वो हम महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ कहें, चाहे महिला पत्रकारों के साथ कहें, कल बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बहनें भी वहां पे प्रदर्शन कर रही थी, तो उनके साथ भी उनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर संजीव सिंह हैं, उनके द्वारा जिस तरह से दुर्व्यवहार हमारी बहनों के साथ किया गया, तो लगातार उनकी पार्टी के लोग इस तरह से कृत्य कर रहे हैं. और उसके बाद भी महिला सम्मान की बात करने वाली प्रियंका गांधी जी, जो मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका नारा वहीं तक सीमित है. और आज उन जेएनयू की जो हमारी 11 युवतियाँ हैं जिन्होंने लिखित में शिकायत की है उनके कांग्रेस के सांसद के खिलाफ, और वो सच्चाई भी उस पर पाया गया, जांच के बाद वो रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसके बाद भी उन लोग मुंह में दही जमाए बैठे हैं, आज तक एक शब्द नहीं बोल रहे हैं. तो आज हम महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने जा रहे हैं कि वो उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित करें. और जो आज उच्च हमारा जो पवित्र सदन है लोकसभा में, वो आज सांसद हैं, उनको सांसद पद से भी उनको बर्खास्त किया जाए. और इसलिए हम राष्ट्रपति महोदय से, हमारे पूरे सांसद, हमारे पार्टी के पदाधिकारी और हमारी सभी महिला बहनें उनसे मुलाकात करनी जा रही हैं, क्योंकि कल के प्रदर्शन में भी देखा कि जिस तरह से महिलाओं में जो आक्रोश था वो आक्रोश भड़की हुई है. और हम महिला सम्मान, सुरक्षा और उनके न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सभी बहनें एकजुट, एक साथ, पूरी ताकत के साथ खड़ी हैं.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए पर बिना अपने रूट्स को भूले।
2: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
3: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर्थोर मसाला।
9: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
10: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
11: Launch control, 0 to 100.
12: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
13: This car makes no sense, yet it makes every sense.
14: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
12: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्ट्योर मसाला।
5: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
6: so many attacks,
5: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
6: It's incredible.
5: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
6: Welcome to Left, Right and Center.
5: Hard facts.
6: War-struck country.
5: Hard questions.
6: In the Ukraine.
5: 30 years of trust.
7: In the Kargil area.
6: North Ukraine.
8: In France. In Italy.
6: At Srinagar.
8: Zionist.
6: Vishnu Shom for NDTV.
5: Vishnu Shom. Only on NDTV.
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
10: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डीकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, माइक वॉल्श, निकोलस बक्स एंड द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट, अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, 22nd and 23rd October, only on NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
3: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर्थर मसाला।
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's happening? How?
8: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
10: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5 weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
11: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
12: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस, डीकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, माइक वॉल्श, निकोलस बक्स, एंड द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट, अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, 22nd and 23rd October, only on NDTV.
13: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट

कि वर्तमान कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार, जो वैसे सोनिया गांधी जी चलाती थी, राहुल गांधी जी जिसका जिसकी कोई इज्जत नहीं करते थे, हमने वो तो सब किससे देखे ही है, गोपाल स्वामी जी के रिक्वेस्ट के बाद, उनकी रिकमेंडेशन के बाद नवीन चावला को निकालना तो छोड़ो, क्योंकि वो इतने लॉयल थे कांग्रेस पार्टी के प्रति, उनको जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। ये उनकी लॉयल्टी जो थी सोनिया गांधी जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति, जो पार्शियलिटी से वो काम करते थे खुलेआम, उसका रिवॉर्ड उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। और देखिए, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर तक सीमित नहीं है। टीकाराम मीना केरल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे, एक वर्ष के बाद उनको कांग्रेस के राजस्थान के मैनिफेस्टो टीम में ले लिया, कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना दिया। दूसरा किस्सा तो और भी खराब है, हाल में मई 2026 का, रतन यू केलकर केरला के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे, हाल की बात है, अभी जो केरल में चुनाव हुआ, चुनाव के तुरंत बाद एक महीने के भीतर वर्तमान में चीफ मिनिस्टर, वर्तमान मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने उनको अपना सेक्रेटरी घोषित कर दिया, मई 2026 में, चुनाव के तुरंत बाद। अब क्या ये कुछ राजनीतिक पुलाव नहीं सेका जा रहा है? क्या आप हमें हेल्प करो इलेक्शन में और हम आपको तुरंत पद की नियुक्ति कर देंगे? तो इस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, साथ ही साथ इलेक्शन ऑफिसर्स को भी कांग्रेस ने समय समय पर दुरुपयोग किया, पक्षपात करवाया, और अंत में जाके उनको या तो कोई पद दिया, गवर्नर बनाया, यूनियन मिनिस्टर बनाया, पार्टी के अंदर ले लिया, इलेक्शन लड़वाया, पूरी तरीके से ध्वस्त किया इलेक्शन कमीशन के बिना कोई पक्ष को फेवर किए इम्पार्शियल वर्किंग को उन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त किया उनके कार्यकाल में। मित्रों, पहले तो इलेक्शन कमीशन कैसे अपॉइंट होते थे कमिश्नर? सरकार अपॉइंट करती थी, कोई उसमें सलाह मशवरा नहीं होता था, किसी प्रकार की किसी से बातचीत नहीं होती थी, जिसने सरकार को बना दिया वो इलेक्शन कमिश्नर बन गया, जिसे चाहा उसे चीफ बना दिया। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसने 2023 में कानूनी प्रावधान किया, नया कानून लाए, और उस कानून के तहत जो नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनको भी सिलेक्शन कमिटी का मेंबर बनाया, और प्रधानमंत्री जी के साथ अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन साथ बैठ के चुनते हैं कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बने, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। मैं 10 प्रश्न आज राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, और मुझे लगता है राहुल गांधी जी के पास इन 10 प्रश्नों में से एक का भी जवाब नहीं होगा। जिस प्रकार का हमने व्यवहार उनका देखा, जिस प्रकार से वो शूट और स्कूट पॉलिसी के बेबुनियाद झूठे आरोप लगा के भाग जाने का काम करते हैं, उसको मद्देनजर रखते तो उनके पास एक का भी जवाब नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी को कि आके इन 10 सवालों का जवाब दें। पहला, वो रोज वोट चोरी की बात करते हैं, रोज इलेक्शन कमीशन को बुरा भला बोलते हैं, बुरे बड़े शब्दों में उनका अपमान करते हैं, पर बार बार मांगने के बाद भी एक भी एफिडेविट उन्होंने फाइल नहीं किया इलेक्शन कमीशन में, कुछ प्रमाण दे, कुछ एविडेंस दे, जो वो क्लेम कर रहे हैं उसको ओथ पे क्लेम करके बोले तो सही, एक जिम्मेदारी तो दिखाए अपनी झूठे आरोप लगाने के पहले। ये कावड़ की तरह जो उनका बिहेवियर है,

0: एक डरपोक व्यक्ति ही ऐसे शूट करके भाग जाता है बजाय के जिम्मेदारी उठाने के अपने आरोपों की। अगर इतना सीरियस दूसरा अगर इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर से, तो जब बिहार में हो रहा था तब चुप्पी क्यों मार साजी, तब क्यों नहीं आवाज उठाई? जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हो रहा था तब क्यों नहीं एक भी बार क्लेम फाइल किया इंक्लूजन के लिए या एक्सक्लूजन के लिए एसआईआर के समय कांग्रेस पार्टी ने? कहां थी कांग्रेस पार्टी उस समय? तीसरा, कांग्रेस के खुद के मंत्री, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के खुद के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के खुद के वर्तमान में सांसद या एमएलए जैसे अभिषेक मनु संघवी जी आंध्र प्रदेश में, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सीपी जोशी जी राजस्थान में, रमेश चेन्नीथाला जी केरल में, इन सब ने पब्लिकली ये कहा है, मीडिया के समक्ष ये कहा है कि लाखों नाम डुप्लीकेट है, ढेर सारे नाम निकालने की आवश्यकता है, इतने सारे लोग मर गए हैं, देहांत हो चुका है, पर उनके नाम अभी भी इलेक्टोरल लिस्ट में, और इससे संदेह आता है कि कोई मिसयूज कर सकता है, कोई गलत नाम के सामने जाके वोट डाल सकता है, इन सबको हटाना चाहिए। जब एसआईआर ने ये काम किया तब कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, या तो कांग्रेस इन सब नेताओं को पार्टी से बहाल कर दे जो एसआईआर मांग रहे थे, जो मांग रहे थे इलेक्ट्रल रोल को शुद्धिकरण किया जाए। आज इलेक्शन कमिश्नर जो एसआईआर के माध्यम से वर्षों से लंबित था, वर्षों से जो आवश्यकता थी कि जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, जिनके नाम डुप्लीकेट हैं, जिनका देहांत हो गया है, उन सबको निकाल के एक शुद्ध लिस्ट बने, और हमने उसका लाभ देखा ही है। अब 90% इलेक्शन वोटिंग होती है, स्पष्ट दिखाते हैं कि ये लोग थे ही नहीं। चौथा सवाल, कांग्रेस के कई लीडर्स उन्हीं के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। शशि थरूर जी ने तो स्वयं कहा कि एसआईआर की वजह से कांग्रेस केरल में जीती, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट नाम, मरे हुए लोगों के नाम, जो लोग वहां से शिफ्ट हो गए वो नाम निकल गए, तो कोई मैल प्रैक्टिस होने की संभावना नहीं थी केरल में, ये शशि थरूर जी का दावा है। रमेश चेन्नीथाला जी ने खुद कहा कि एसआईआर की वजह से ही आज कांग्रेस जीत पाई है केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री स्वयं श्री वीडी सतीशन जी ने एसआईआर की तारीफ की है। अधीर रंजन चौधरी जी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ करी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उन्होंने अच्छी तरीके से लड़ाए, ईमानदार व्यवस्था से लड़े गए, और जो गलत काम ममता बैनर्जी जी करती थी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने भी किया और इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। अब उनकी खुद की पार्टी बेबुनियाद और झूठे वोट चोरी के दावे ला रही है, और जो ममता बैनर्जी को अपोज करते थे आज ममता बैनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिला के अब इलेक्शन कमीशन की विरोध करने निकल उठे हैं। इनके दोहरे मापदंड बार बार देखने को मिलते हैं। पांचवा, अगर वास्तव में ये मानते हैं कि इलेक्शन रिग्ड है, या इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रही है, या एसआईआर ठीक नहीं है, तो इनकी चारों कांग्रेस सरकार कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और केरल, और साथ में जो झारखंड और तमिलनाडु की सरकार में शामिल है, इसमें सत्ता का क्या उनको लोभ है? अगर वो सही माने में मानते हैं इलेक्शन कमीशन ने ईमानदार व्यवस्था नहीं रखी है, तो क्यों नहीं रिजाइन करते हैं इनके छह के छह मुख्यमंत्री? तुरंत रिजाइन करना चाहिए। और ये कई लोग ये बात रख रहे हैं कि कांग्रेस तय करे, ऐसा नहीं हो सकता है जहां जीते वहां तो सही काम हुआ, वहां इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात नहीं किया, और जहां हारे वहां एसआईआर को गाली देना। छठा, अगर ये सही माने में मानते हैं कि एसआईआर रिग्ड है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जब वो जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का काम ठीक है, इलेक्शंस आर परफेक्ट, और जब हार रहे हैं तो इलेक्शंस आर रिग्ड। इसको आजकल एक लोग युवा हमारे साथी बोलते हैं, डेलुलू इज द सोलुलू। ये माइंडसेट, ये जो मानसिकता है इनकी, इसको डेल्यूजन में रहने के वाले जो लोग हैं उनको ये डेल्यूजन में ही सोल्यूशन दिखता है। डेलुलू इज द सोलुलू, ये ऐसी मानसिकता है कांग्रेस की, और इसीलिए लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, इसीलिए बार बार ये चुनाव हारते हैं, और झूठ बोल बोल के कभी जनता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त करेंगे, झूठ झूठ बोल के ये कभी जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और इसीलिए कई लोग मानते हैं कि राहुल गांधी स्वयं सबसे बड़े रेड फ्लैग है, ही इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग, जिसके कारण कांग्रेस बार बार हार रही है। कई युवा साथी बैड ओमेन को कहते हैं बिगेस्ट रेड फ्लैग, और वो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़े रेड फ्लैग है जिसके कारण कांग्रेस बार बार हार रही है। सातवां, कल का जो भद्दा व्यवहार था, और स्वयं राहुल गांधी और उनके साथियों ने जिस प्रकार से एक पत्रकार बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, बहन 3 महीने प्रेग्नेंट थी, गर्भ से थी, बार बार कह रही थी कि संभल के मैं गर्भवती हूं, लेकिन जिस तरीके से उसका धक्कम धक्की की, जमीन पे फेंका, फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, सिर्फ गुनाह क्या था कि उनका प्रोटेस्ट कवर कर रही थी, 2 सवाल पूछ रही थी। ऐसा व्यवहार मैं नहीं मानता हूं देश के 140 करोड़ जनता कभी माफ करेगी, मैं नहीं मानता हूं एक भी पत्रकार भाई बहन इस व्यवहार को कभी माफ कर सकती है। आठवां सवाल, कभी ममता बनर्जी को गाली गलौज करते हैं, इलेक्शन में उनके विरोध लड़ते हैं, कहते हैं कि ममता बनर्जी ने द्वार खोल दिया बीजेपी को पश्चिम बंगाल जीतने का, उनके गलत कारनामों से, उनके मैल प्रैक्टिसेस से। और चुनाव के बाद जब दोनों हार जाते हैं तो क्या है, वो चोर चोर मुसेरे भाई, तो अब दोनों शेमलेसली बेशर्मी से यू टर्न करके अब एसआईआर को और इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करने लग जाते हैं। अब सातवें एक कमरे में बैठ के एक ही टेबल पे ढूंढ रहे हैं दोनों कि हम हारने का कोई कारण ढूंढे, तो एसआईआर को ब्लेम कर दो, इलेक्शन कमीशन को दे दो, थोड़ी तो रीढ़ की हड्डी दिखाएं राहुल गांधी और ममता बनर्जी, कभी तो एक स्टोरी पे स्टिक करें बजाय के अपना नैरेटिव ही बार बार बदलने के। 9th सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एसआईआर का मई 2026 में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड किया है, कहा ये संवैधानिक तौर पे ये सही हुआ है, जब फॉर्म 6 के ऊपर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, तो अगर ये वास्तव में संविधान का सम्मान करते हैं तो फिर सड़कों पे क्यों उतरे? जुडिशियल प्रोसेस तो चल ही रहा है, कोर्ट देख रहा है कि फॉर्म 6 ठीक है, कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कोर्ट बताएगी, और एसआईआर तो संवैधानिक तौर से ठीक है, बोल ही चुका है कोर्ट, तो ये सड़कों पे उतर के एनआरके क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे, लोगों को क्यों भड़काने की कोशिश कर रहे। वैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक वाक्य इस्तेमाल किया था और मैं कोट करता हूं, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आर अवेलेबल अबैंडनिंग देम इज द ग्रामर ऑफ एनार्की अनकोट। जब संवैधानिक रास्ते, संवैधानिक मार्ग आपके पास उपलब्ध है, तब आप उसको जब नहीं फॉलो करते हो, उसके जब इज्जत नहीं करते हो, आप दर्शाते हो कि आप एनार्किस्ट हो और एनार्की के रास्ते में विश्वास करते हो। और मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वास्तव में सबसे बड़ा संविधान का अपमान करती है और एनार्की सड़कों पे दिखाती है, ये देश की जनता देख रही है। और फाइनल दसवां सवाल, अगर सही माने में उनके पास कोई प्रूफ है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अगर सही माने में कोई वोट चोरी का प्रमाण है उनके पास, तो कोर्ट को क्यों नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दिया? अरे यहां इनकी तो इतनी बेवकूफी है कि एक पिटीशन भी ठीक से फाइल नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े कानूनी वकीलों को इन्होंने पार्लियामेंट में राज्यसभा की सीटें दे रखी हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल करते हैं उसमें 14 कमजोरियां हैं, 14 डिफेक्ट्स कोर्ट ने सामने लाया है। यहां तक कि कोर्ट फी भी ठीक से नहीं भर सकते हैं, उसमें भी पैसे कम भरे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस अपनी नाकामियों के लिए खुद जिम्मेदार है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य अंधेरे में है, जनता भी देख चुकी है, कांग्रेस के नेता भी देख चुके हैं। जो व्यक्ति एनार्की में बिलीव करे, झूठ और फरेब पे अपनी पूरी राजनीति करे, और जो पार्टी के नेता एक कोर्ट का एफिडेविट, कोर्ट का पिटीशन ठीक से नहीं फाइल कर पाते हैं, एक आईडी का जेरोक्स ठीक से भर नहीं सकते कोर्ट में, मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी का आईडी भी पढ़ा नहीं जा रहा है, 220 रुपए भी ठीक से कोर्ट फी नहीं पे की, ऑथराइजेशन भी मिसिंग है एफिडेविट में, मुझे लगता है ऐसी पार्टी और ऐसा नेता क्या देश को भविष्य देगा, क्या देश के 140 करोड़ लोगों के आशा अपेक्षाओं को पूरा करेगा, क्या नेतृत्व विश्व के सामने देश का रखेगा? ये उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को बेनकाब करके चंद दिनों के अपने व्यवहार से पूरी तरीके से साबित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी। मेरा भारत सरकार में मंत्री आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी से आग्रह कि अपना संबोधन करें।
2: मित्रों, पीयूष जी ने अभी बहुत विस्तार से बताया और कई प्रश्न इन्होंने पूछा है। मुझको नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी के पास एक भी प्रश्न का जवाब होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से इस देश में जिस तरह नौटंकी और ड्रामा कियर के देश भर में अराजकता कायम करने का प्रयास किया जा रहा है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको नहीं लगता है कि इस देश की जनता कभी इसको स्वीकार करे। देश में संविधान सर्वोपरि है, परिवार पर सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए उनका परिवार सर्वोपरि है, और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। आप आज सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रदर्शन करें, आज तक देश के इतिहास में कभी हुआ कि कोई राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके प्रदर्शन करेगा? आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ। क्यों कर रहे हैं, किस तरह का आचरण आप कर रहे हैं? आप सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर होती है और याचिका आपने जो दायर किया वो कैसी याचिका है उसका भी विस्तार से पीयूष जी ने बता दिया। तो आप याचिका नहीं दायर कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका पूरा प्रयास जो पिछले कई दिनों से चल रहा है, उस प्रयास का एकमात्र तात्पर्य यह है कि इस देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को बदनाम करके उन पर दबाव बनाया जा सके। भाई राहुल जी, ये मोदी जी का शासनकाल है,

0: और मोदी जी के शासनकाल में दबाव काम नहीं करता है। आप आज मुख्य चुनाव आयोग के बारे में विस्तार से पीयूष जी ने बताया कि किस तरह से आपने किया, आपको आदत बनी हुई है, आप इसके हैबिचुअल हैं कि आपको चाहिए कमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो आपके प्रति वफादार हो। पीयूष जी ने बताया चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के का विस्तार से एक करके उन्होंने बताया। अब आप सर्वोच्च न्यायालय की भी बात करिए, इस देश में एक सज्जन थे, कई उदाहरण है, एक सज्जन थे बहरुल इस्लाम साहब। बहरुल इस्लाम साहब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के बाद वो राज्यसभा के एमपी बने और राज्यसभा के एमपी बनने के बाद 6 साल जब पूरा कर लिए तो आसाम हाईकोर्ट के जज बन गए। और आसाम हाईकोर्ट के जज बनने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट आ गए और जब 83 में फिर उनका टेन्योर सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट से 3 महीना पहले इस्तीफा देके फिर राज्यसभा के एमपी बन गए कांग्रेस पार्टी से। यही कमिटेड संवैधानिक संस्था को आप चाहते हैं? इस तरह के संवैधानिक संस्थाओं को आप रखना चाहते हैं? आप सबको मालूम है कि रंगनाथ मिश्रा कौन थे, उसी सुप्रीम कोर्ट में थे, वो आपको आपकी कांग्रेस पार्टी के एमपी बने। तो आप जिस कमिटेड संवैधानिक संस्थाओं की सोच रखते हैं वो नहीं संभव है, वो नहीं होना है। और जिस तरह का अराजकता आप इस देश में कायम करना चाहते हैं, मुझको लगता है कि राहुल गांधी जी अपनी दादी जी के चिन्हों पर चल रहे हैं। वो 1974-75 के दौर में कांग्रेस पार्टी को ले जाना चाह रहे हैं, जब इस देश में इमरजेंसी लगा था और सारे लोगों को, आप पत्रकार साथियों के, जजेस की, हाईकोर्ट की, सबों की मौलिक अधिकार सबों का समाप्त कर दिया गया था। किसी को कोई साहस नहीं था सड़क पर बोलने का, लाखों लोग जेल के अंदर थे, मैं भी उसमें एक था, हम सब लोग जेल में थे। किस लिए? अपनी सत्ता को बचाने के लिए। तो जिस तरह उनकी दादी जी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरे देश को और पूरे संविधान को समाप्त कर दिया, उसी तरह आज ये सत्ता पाने के लिए अराजकता की स्थिति पैदा करना चाह रहे थे।
1: All right, so two union ministers there, Rajiv Ranjan and Piyush Goyal, addressing a press conference, hitting out at Rahul Gandhi. Aishwarya joins me live on the broadcast. Aishwarya, at 4 p.m. Is when Rahul Gandhi will be holding a team meeting, and after that is where a press conference is expected by the opposition leaders. And what exactly are they going to talk about? Now, number one, of course, it is going to be about the hearing in the Supreme Court that had been delayed. And the second could also be about the BJP's allegations on them.
2: Well, certainly union ministers Piyush Goyal and Rajiv Ranjan, they're slamming the Congress party, stating that there are many examples in the past where the Congress party has politicized the election commissions and the constitutional bodies as well. Perhaps there are examples of where there were Congress members who were given the positions in the Rajya Sabha and made the Supreme Court judges. It is Piyush Goyal who has slammed the Congress party, stating that the person who has not able to file even an affidavit correctly, how can he run the country or how can he take the Congress party forward? Rajiv Ranjan, they are also union minister, slamming the Congress party, stating that there are examples in the past where it has been proven that how Congress party had for their own benefit given certain individuals benefits, and Congress leader Rahul Gandhi wants to take the Congress party back in the era of 1975, and he is of course, you know, he's walking on the footsteps of his grandmother Indira Gandhi, and that's the anarchist mindset that Rahul Gandhi has. Yes, of course, in

0: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी।
2: यू नो डिजाइन कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोज
3: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।

0: बात करी, उन्होंने हमें बताया कि खुद राहुल गांधी ने उनके कंधे से पकड़कर उनको ऐसे खींचा और नीचे ज़मीन पर फेंका, और वो उनसे सवाल भी नहीं पूछ रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इस प्रोटेस्ट को कवर कर रही थी। और सोचिए कितने निर्मम है ये कांग्रेसी कि किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जब वो फीमेल पत्रकार जमीन पे राहुल गांधी द्वारा फेंकी गई और गिरी, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हाथ नहीं दिया और वो खुद उस फीमेल पत्रकार को पर लांछन लगाना चाह रहे थे। स्मैश द पेट्रियार्की की बात करने वाले राहुल गांधी ने आज एक गुंडो जैसा व्यवहार किया है।
1: The videos can be made into anything, the conspiracies can be hashed, the scripting can be done, but that video itself is very clear that Rahul Gandhiji was trying to protect her, that when somebody else was going behind someone. So it is not the case that Rahul Gandhi, yesterday itself in that whole crowd, the way Rahul Gandhi was protecting Neha Bora as a little sister. So these are what we all feel about Rahul Gandhi, not just one day or yesterday or day before yesterday. He has always maintained a very respectful approach towards women and also for their empowerment.
2: With that, it's time for us to slip into another quick commercial break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side as well.

0: Ma'am, I'm on painkillers, so feeling better.
1: All right, could you tell us what happened yesterday, Richa? We want to understand and get a detailed account from you, your version of the incident where you've made a very serious allegation against the leader of opposition, Rahul Gandhi.
0: Any allegation, it is all over the internet. I have shared the video, it was recorded. And मैं मुझे राहुल गांधी ने फर्स्ट फर्स्टली इस सिचुएशन बहुत आराम से ये हैंडल कर सकते थे फर्स्ट और उनके बाद उनके गज ने मुझे धक्का दे दिया. मैं सीडियो पे मेरे कैमरा की विजिबल है, येलो कैप्ड पर्सन इज माय कैमरा पर्सन, उसको कोनी मारी है राहुल गांधी ने, मेरे ऊपर गिरा है, सीढ़ियों पे हम गिरे हैं, मैं पेट के बल गिरी हूँ, मेरे पैर में, घुटनों में, नेक में, सब में पेन है. और उसके बाद से मेरे हमारे ऊपर और चार पांच लोग गिर गए हैं. मैं उठी हूँ और क्योंकि मेरी माइक मेरे हाथ से छूट गई है, अभी विजुअल्स भी जो आप चला रहे हैं, मैं यहाँ पर चिल्ला रही हूँ कि मेरी माइक नहीं है, बट मैं मेरी कॉलर माइक है, राहुल गांधी ने मुझे धकेला है, राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया है, मैं चिल्ला रही हूँ ऑल ओवर देयर. और nobody is assisting me from the crowd कि चलो निकल जाओ गिर गई हो तो. they started shouting on me. और ये सब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, राहुल गांधी की जिंदाबाद के नारे लगा. जब मैं चिल्ला रही हूँ कि राहुल गांधी ने मुझे धकेला है, मेरा माइक गिर गया है, कैमरा ये जो आप देख रहे हो विजुअल में बोल रही हूँ कि कैमरा बंद मत करो, कैमरा क्यों बंद किया, दिखाओ इनको. और
1: मिनट के लिए अगर मैं कुछ बोल सकती हूँ यहाँ पे, अगर आप वीडियो देखेंगे, राहुल गांधी ने आपको रास्ता दिखाया था बीच में से. He says go ahead and you say yes, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ. नहीं नहीं रिचा, एक सेकंड मेरी बात सुनिए. राहुल गांधी उस वीडियो में, मैंने पूरा वीडियो देखा है, सुना है, where the leader of opposition says जाइए आप, and he makes way for you and you say हाँ हाँ मैं जा रही हूँ. Then the camera turns at a 45 degree to a 60 degree angle because of the crowd in the area, because of the jostling, सब वहाँ पे push करे एक दूसरे को, जिसकी वजह से
0: मैम सॉरी टू इंटरप्ट बट मेरी आवाज बहुत क्लियर है, मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं रुकी हूँ कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ. मैंने बोला
1: मेरे पास वीडियो है जहाँ पे आप बोल रहे हैं आई एम लीविंग, डोंट पुश मी. We have the video. I will, Richa, stay with me for a moment. I'm going to ask my director to just play out that video also with the nat up for our viewers and for you. There are different angles of the video. We have one. Let's just play it out, then you can tell us what you think.
2: No, this is not the place.
1: Richa is you saying main ja rahi hu, he says go down, main ja rahi hu, dhakka mat mariye. Is that not your voice?
0: It was my voice. Dhakka mat mar, dhakka mat diji sir, mujhe dhakka mat diji, main ja rahi
1: hu. You just told me that, you just told me previously that you said that that wasn't you, that is why.
0: No, wahan pe ek aur awaaz hai Rahul ji, aap please usko clarify kijiye, wahan par ek aur awaaz aa rahi hai Rahul ji, राहुल जी ऐसे करके, वो मेरी आवाज नहीं है. बट सर मुझे धक्का मत दीजिए, वो मेरी आवाज है क्योंकि वो मेरे माइक से रिकॉर्ड हुई है. इतना क्लियरली उस भीड़ में अगर आपकी क्लियर आवाज आ रही है.
1: आई वॉन्ट टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी हियर फॉर क्लैरिटी ऑन दिस सीक्वेंस, जहां से राहुल गांधी आपको बोल रहे गो डाउन, व्हाट हैपेंड, टेल अस.
0: तो उन्होंने मुझे गो डाउन बोला, मौका नहीं दिया जाने का क्योंकि भीड़ थी. तो उन्होंने गो डाउन बोलने के साथ मुझे यहाँ पे पकड़ा और पुश किया आगे की तरफ. तो मैं जाने लगी और उसी दो से मैम इट्स जस्ट मैटर ऑफ टू सेकंड्स, तो आप इसको प्लीज इसको नोट करिएगा. उन्होंने मुझे पुश किया, मैं जाने लगी, तब तक मुझे बहुत प्रेशर फील हुआ. तो उसी दो सेकंड में मैंने चिल्लाया कि मुझे सर हमें धक्का मत दीजिए, हम जा रहे हैं. और सर धक्का मत दीजिए, धक्का, मैं गिर गई.
1: व्हाई वुड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन पुश यू, प्लीज एक्सप्लेन टू अवर व्यूअर्स.
0: आस्क हिम, प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो द आंसर, बिकॉज आई वॉज देयर प्राउडली स्टैंडिंग देयर टू टेक अ स्मॉल बाइट फ्रॉम लीडर ऑफ ऑपोजिशन. इट वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अ जर्नलिस्ट, अ फीमेल जर्नलिस्ट लाइक मी. आई वॉज होपिंग दैट माई सीनियर्स विल बी प्राउड ऑन मी टूडे दैट आई हैव टेकन अ बाइट फ्रॉम एलओपी इटसेल्फ. So I was proudly standing. I was not asking any question. I just wanted that whatever he's saying, it should be recorded.
1: How are you going to take this forward? Will you be taking this forward along with the BJP? Because the BJP has come out in your support. They have taken on Rahul Gandhi. They have said that his claim of smashing patriarchy falls flat after this incident. Or will you be taking this up independently along with your company?
0: मैम फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट बीजेपी और दिस इज नॉट एनी लेफ्ट और राइट हैपनिंग राइट इट हैज हैपेंड विद मी एंड एट दिस टाइम दे कांग्रेस हैज ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी टू कम विद एटलीस्ट दे शुड आस्क मी हाउ आर यू असिस्ट मी वट एवर दे डिडंट डू एनीथिंग राइट सो अगर मेरे मैं बहुत दुखी हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं बहुत दुखी हूँ मैं बहुत फेमस नहीं हूँ और मेरे पास उस समय जो चार लोग आते हैं तो मेरे लिए उनके मन में रिस्पेक्ट तो होगी ना इरिस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कौन है मेरे सामने जो आए हैं
1: मैम बीइंग अ
0: जर्नलिस्ट कुछ sure कुछ पुगाए मेरा हाल चाल
1: भंडारी इज हु कम्स टू द हॉस्पिटल एंड मीट्स यू
0: आई नो हिम आई नो हिम
1: नो द पीपल फ्रॉम बीजेपी एनी जर्नलिस्ट वुड नो दीस पीपल
0: मैम व्हाट आई एम सेइंग मेरी सिस्टर सबसे पहले जिन सर के पास गई थी इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड वो आए उनको मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो कौन है मेरी सिस्टर जानती थी और कौन कौन आ रहा है मैं तो इमरजेंसी में थी ना पर्दों के पीछे
1: So तो कौन कौन आ रहा है सब खड़े हैं। Are you going to take some action? Are you planning some action?
0: Ma'am, I am sitting with my family. मेरी ऑफिस की टीम भी आ रही है. I'm sitting with them and then we'll decide कि आगे क्या करना है, कैसे ले जाना है इसको.
3: Meanwhile, several leaders and journalists have reacted to this incident that happened with that pregnant woman and what she has to say when the LOP Rahul Gandhi pushed her during the protest. Take a look.
4: बिल्कुल ये जो तस्वीरें दिख रही है निश्चित रूप से इस तस्वीर को देख के हम सब भी हैरान हैं कि ये कैसा प्रदर्शन ये कैसा व्यवहार कि पहले दिल्ली पुलिस महिला पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया उसके बाद कल जिस तरह एक जर्नलिस्ट के साथ महिला जर्नलिस्ट के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया गया निश्चित रूप से ये देख के शर्म आती है कि ये कैसे नेता प्रतिपक्ष है
5: कि ये जो लोग हैं जो सो कॉल्ड विपक्ष अपने आप को कहते हैं अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं में इतना ज्यादा घिरे हैं कि इन्हें किसी की परवाह नहीं है ना कार्यकर्ता की परवाह है ना जनता की परवाह है ना रिपोर्टर की परवाह है ना पुलिस पर्सन की परवाह है पूरे सिस्टम को डैमेज करना चाहते हैं केवल और केवल अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए
6: देश भारत के विपक्ष के नेता खुद को फ्रेम में रहने के लिए रखने के लिए किसको भी धक्का मुक्की कर रहे थे ये तो आपके चैनल के माध्यम से देखा है कई उनके मुख्यमंत्री को भी ठोसा लगा रहे थे धक्का मार रहे थे मुक्का मार रहे थे लेकिन ये हमारी पत्रकार बहन ये प्रेग्नेंट थी ये भी नहीं दिखाई पड़ा उनको ये बहुत ही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये दुर्व्यवहार है इसकी जितनी निंदा करे उतनी कम है
7: आप सबने वो वीडियो देखा कैसे एक फीमेल पत्रकार को राहुल गांधी ने कोनी मारकर हाथ से पकड़कर गिराया और वो फीमेल पत्रकार की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो इस वक्त अस्पताल के अंदर एडमिट है हम तीनों उनको देखने आए और जब हमने उनसे बात करी उन्होंने हमें बताया कि खुद राहुल गांधी ने उनके कंधे से पकड़कर उनको ऐसे खींचा और नीचे ज़मीन पर फेंका और वो उनसे सवाल भी नहीं पूछ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इस प्रोटेस्ट को कवर कर रही थी और सोचिए कितने निर्मम है ये कांग्रेसी कि किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जब वो फीमेल पत्रकार जमीन पे राहुल गांधी द्वारा फेंकी गई और गिरी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हाथ नहीं दिया और वो खुद उस फीमेल पत्रकार को पर लांछन लगाना चाह रहे थे स्मैश द पेट्रियार्की की बात करने वाले राहुल गांधी ने आज एक गुंडो जैसा व्यवहार किया है
8: शाम 10 बजे मेरे संज्ञान में आया कि एक महिला पत्रकार रिचा प्राशर जी के साथ बदसलूकी की गई है राहुल गांधी जी द्वारा तो तुरंत प्रभाव से स्थानीय विधायक होने के नाते मैं हम यहाँ आए हमारे साथ प्रदीप भंडारी जी राजेश भाटिया जी स्थानीय मंडल अध्यक्ष थे हम आए हमने उनका हाल चाल पूछा उनको एडमिट कराया और उनकी स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब इतनी शर्मनाक हरकत की गई है राहुल गांधी जी द्वारा और मैं इसकी कड़ी निंदा भी करता हूँ कि जो व्यक्ति स्मैश द पेट्रियार्की की बात करते हैं वो एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो सिर्फ अपना काम कर रही थी और एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि अगर कोई पत्रकार उनसे कुछ पूछ रहा है तो उनको उस चीज़ का जवाब देना चाहिए ना कि उनको मैन हैंडल करके ज़मीन पर गिराना चाहिए
9: ये बताया जाए कहाँ की ये वीडियो है सुप्रीम कोर्ट का वीडियो है और कौन पत्रकार थे उसके हाथ में कौन से वो बताएं जरा सा वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वहाँ पर एक तो उस परिसर में राहुल गांधी जी जब अंदर गए तो काफ़ी भीड़ हो गई, कुछ लोग अंदर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयास किए, उनके सिक्योरिटी पर्सनल जो थे उन्होंने रोका ऐसे किसी को। और ये मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी इस जनसैलाब को देख के बहुत तरह के इस प्रकार के आरोप लगाएंगे और उन्हें चिंता आ गई कि उनकी उनकी जमीन खिसक रही है, ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ज्ञानेश कुमार ना जवाब दे रहे हैं ना कोई जिम्मेवारी फिक्स हो रही है, इस प्रकार की चीज़ें आती है, तो ये विषयांतर करने की इनकी प्रवृत्ति रही है।
10: Videos can be made into anything. The conspiracies can be hashed. The scripting can be done. But that video itself is very clear that Rahul Gandhiji was trying to protect her, that when somebody else was going behind someone. So it is not the case that Rahul Gandhi, yesterday itself in that whole crowd, the way Rahul Gandhi was protecting Neha Bora as a little sister. So these are what we all feel about Rahul Gandhi, not just one day or yesterday or day before yesterday. He has always maintained a very respectful approach towards women and also for their empowerment.
3: In other news, the SIR showdown has now turned into a Congress versus BJP war of words. Union Minister Piyush Goyal has now launched a scathing attack on Rahul Gandhi, accusing him of spreading anarchy and misleading the nation. Goyal branded Rahul Gandhi delusional, daring him to prove vote theft charges or ask all Congress elected chief ministers to resign. The union minister also posed 5 questions to Rahul Gandhi, and this attack comes at the back of 11 INDI alliance MPs approaching the top court. The opposition's plea in the Supreme Court seeks a stay on the ongoing SIR exercise and also a Supreme Court audit of voter deletions. It has also sought an independent probe led by a former Supreme Court judge.
11: अगर ये सही माने में मानते हैं कि SIR rigged है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जब वो जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का काम ठीक है, इलेक्शंस आर परफेक्ट, और जब हार रहे हैं तो इलेक्शंस आर रिग्ड। इसको आजकल एक लोग युवा हमारे साथी बोलते हैं, डेलुलू इज द सोलुलू। ये माइंडसेट, ये जो मानसिकता है इनकी, इसको डेल्यूजन में रहने के वाले जो लोग हैं उनको ये डेल्यूजन में ही सोल्यूशन दिखता है। डेलुलू इज द सोलुलू, ये ऐसी मानसिकता है कांग्रेस की, और इसीलिए लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, इसीलिए बार बार ये चुनाव हारते हैं। राहुल गांधी जी की अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, जिसको वो बड़ा कन्वीनियंटली नजरअंदाज कर देते हैं, तो उन्होंने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी टिकट पे कैंडिडेट बनाया, एक को यूनियन कैबिनेट में लिया, 2 इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को गवर्नर बनाया, और एक बार तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पे कि उनके नीचे काम करने वाला इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरीके से कांग्रेस की एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, उसको निकालने से इनकार कर दिया। मैंने इतना पक्षपात हमने शायद ही कभी कोई सरकार में देखा हो जितना कांग्रेस ने अपने रवैये में दिखाया।
12: फिर 4 बजे राहुल गांधी जी ने आप लोगों को चाय पर बुलाया है, चाय पर सिर्फ चर्चा होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कार्यक्रम है, लेकिन क्या इसके बाद प्रदर्शन एक बार फिर आज आप लोग करते नजर आएंगे?
13: देखिए, Day 1 से हमारे जितने भी नेता हैं, जननायक राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, सभी अपडेट को आप लोग को बता दिए। उसके बावजूद भी मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि कल का जो प्रदर्शन हुआ, कल रोड पे हम लोग थे, आपने देखा 10 तारीख को क्या हुआ था इसी दिल्ली में, इसी दिल्ली को कैसे छावनी लोग बना दिया था, किला बना दिया था। एक और तस्वीर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति हाथ जोड़ करके कह रहा है कि मेरा परिवार हॉस्पिटलाइज है, मैं दवा लेने जा रहा हूं, मुझे तो जाने दो। उसके बावजूद भी लोगों ने उसको उठाया और ले जाकर जेल में डाल दिया। तो ये तानाशाही है, देश गुलाम है, और कहां से ये ऑर्डर मिला पुलिस को कि जनता के साथ में आप ऐसे कर सकते हैं? तो इन सारे मामला को लेकर के कंटिन्यू लोकतंत्र को बचाने का, देश का बचाने का, संविधान का बचाने का, हमारे नेता लोगों का जो लड़ाई चल रहा है उसमें मैं एक छोटा सिपाही हूं और लड़ाई कंटिन्यू चलेगी।
12: जी, आज भी सड़क पर प्रदर्शन नजर आएगा,
13: एकदम आएगा।
14: सी, दिस इज अ perpetual agitation unless and until the government of India decides and the Chief Election Commission decides. So the choice is theirs. It's not our choice because we have already decided and declared that this agitation will go ahead. We will not budge an inch. No let up in the agitation.
15: हो सकता है हमने राहुल जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सभी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के नाम पर एक एक पिटीशन है उसमें कोई बहुत त्रुटि हो सकती है वो अब ये हम उसमें दुरुस्त कर लेंगे रिपेयर कर लेंगे
16: इज देयर दैट इज दैट क्वेश्चन इज आल्सो अरेस्ट द कोर्ट इज नॉट प्रॉपरली हैंडलिंग द केस एंड द सीजेआई वाज अपॉइंटेड बाय द Prime Minister. The BJP is doing all kind of mischief. They want to kill democracy. They want to make this country as Hitler Germany.
3: Well, we have some breaking news coming in. Rahul's October 11th letter to the Chief Justice of India has now been accessed. In that letter, the LOP raised three issues. Number one, EC, SIR, Punjab poll. In that letter to the Chief Justice of India. Meanwhile, the Chief Justice of India has said that Sikh EVM policy review. Meanwhile, Rahul has said that seek urgent reform before the elections in Punjab. Apart from that, Rahul Gandhi also flagged opaque design. And these are the issues that Rahul Gandhi wrote in that letter to the Chief Justice of India. Remember, the CJI had declined to meet Rahul Gandhi yesterday when that Chalo Delhi protest was taken out of the Congress Party, the opposition, the Samajwadi Party and various other leaders. But the latest coming in is that the details of that letter which Rahul Gandhi has written to the Chief Justice of India, apart from, of course, the electoral reforms, the SIR and the action against the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, he also spoke about how the EVM policy should be reviewed before elections in Punjab. I'm going to go across to Srishti for more on this. Srishti, we have details of the issues that Rahul Gandhi wrote to the Chief Justice of India. Tell us more about this.
17: Well, yes, Rahisha, NDTV has exclusively accessed this representation which was made by Rahul Gandhi directly to the Chief Justice of India on 11th October. Yesterday on 12th October, the Supreme Court Registry directed that this be converted into an application, and the same was listed with a batch of pleas regarding the October 10th protest which was supposed to be listed today. Now, in his representation, the Rahul Gandhi has raised concerns not just about Election Commission of India and SIR, but also about the EVMs, and he's also flagged the urgency that the Supreme Court should intervene and decide these matters urgently ahead of the Punjab elections, which are scheduled in early 2027. He has said that the SIR issue, the issue of the ECI, the concerns which are being raised, will affect the elections, the voting, as far as the Punjab elections are concerned. Not just that, he's also flagged the alleged unilateral and arbitrary exercise by the election commissioner, the chief election commissioner, as far as the last few months in the SIR exercise is concerned. What's also important is that he's asked the CGI to also look into the use and deployment of the electronic voting machines, EVMs, a concern which has been raised by Rahul Gandhi earlier as well. He sought a thorough review of the EVM-related decisions, policies,
3: with me, we just want to tell our viewers that we have that letter, that picture of the letter which Rahul Gandhi has written to the Chief Justice of India on your screens right now, where he has raised three issues, EC, SIR, and also he says that seek urgent reform before Punjab polls. Remember, the Chief Justice of India declined to meet Rahul Gandhi yesterday, saying that this does not fall under his jurisdiction. And while this letter has also been accessed, we are also witnessing Rahul's high tea party, which will take place today in few moments from now. But this is exclusive Rahul's letter to the CGI, which has now been accessed. Meanwhile, the Bharatiya Janata Party has come out and said that Rahul Gandhi needs to give proof of voter theft. And if that's the scene, then the Congress CMs of those states need to resign as well. We'll be tracking the story very closely staying on with the story. Meanwhile, NDTV's managing editor Shiv Arur has spoken to Congress MP Shashi Tharoor exclusively on the opposition's plea in top court against the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Take a listen.
18: Let me stress, at the end of the day, when I said it's a good day for the defense of democracy, I think the Congress was able to make its point very clear. It was able at the same time to demonstrate that it was standing with the people, because the people were standing with the Congress. And I think the symbolic value at the end of the day of the message was driven home when Rahul Gandhi's election petition against the ECI

0: इतना ज्यादा घिरे हैं कि इन्हें किसी की परवाह नहीं है, ना कार्यकर्ता की परवाह है, ना जनता की परवाह है, ना रिपोर्टर की परवाह है, ना पुलिस पर्सन की परवाह है। पूरे सिस्टम को डैमेज करना चाहते हैं केवल और केवल अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए।
1: देश भारत के विपक्ष के नेता खुद को फ्रेम में रहने के लिए, रखने के लिए किसको भी धक्का मुक्की कर रहे थे, ये तो आपके चैनल के माध्यम से देखा है। कई उनके मुख्यमंत्री को भी ठोसा लगा रहे थे, धक्का मार रहे थे, मुक्का मार रहे थे, लेकिन ये हमारी पत्रकार बहन ये प्रेग्नेंट थी ये भी नहीं दिखाई पड़ा उनको। ये बहुत ही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये दुर्व्यवहार है, इसकी जितनी निंदा करे उतनी कम है।
2: आप सबने वो वीडियो देखा कैसे एक फीमेल पत्रकार को राहुल गांधी ने कोनी मारकर हाथ से पकड़कर गिराया और वो फीमेल पत्रकार की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो इस वक्त अस्पताल के अंदर एडमिट है। हम तीनों उनको देखने आए और जब हमने उनसे बात करी उन्होंने हमें बताया कि खुद राहुल गांधी ने उनके कंधे से पकड़कर उनको ऐसे खींचा और नीचे ज़मीन पर फेंका और वो उनसे सवाल भी नहीं पूछ रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इस प्रोटेस्ट को कवर कर रही थी। और सोचिए कितने निर्मम है ये कांग्रेसी कि किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जब वो फीमेल पत्रकार जमीन पे राहुल गांधी द्वारा फेंकी गई और गिरी, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हाथ नहीं दिया और वो खुद उस फीमेल पत्रकार को पर लांछन लगाना चाह रहे थे। स्मैश द पेट्रियार्की की बात करने वाले राहुल गांधी ने आज एक गुंडों जैसा व्यवहार किया है।
3: शाम 10 बजे मेरे संज्ञान में आया कि एक महिला पत्रकार रिचा प्राशर जी के साथ बदसलूकी की गई है राहुल गांधी जी द्वारा, तो तुरंत प्रभाव से स्थानीय विधायक होने के नाते मैं हम यहाँ आए। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जी, राजेश भाटिया जी और स्थानीय मंडल अध्यक्ष थे, हम आए, हमने उनका हाल चाल पूछा, उनको एडमिट कराया और उनकी स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब इतनी शर्मनाक हरकत की गई है राहुल गांधी जी द्वारा। और मैं इसकी कड़ी निंदा भी करता हूँ कि जो व्यक्ति स्मैश द पेट्रियार्की की बात करते हैं वो एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो सिर्फ अपना काम कर रही थी। और एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि अगर कोई पत्रकार उनसे कुछ पूछ रहा है तो उनको उस चीज़ का जवाब देना चाहिए, ना कि उनको मैन हैंडल करके ज़मीन पर गिराना चाहिए।
4: The videos can be made into anything. The conspiracies can be hatched. The scripting can be done. But that video itself is very clear that Rahul Gandhiji was

0: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
1: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: कांग्रेस को सिर्फ 22%। राजस्थान में भी जो स्थानीय इकाई के चुनाव निकाय के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विजय हुआ है। नगर निगम में 90% नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने कब्जे किए हैं। नगर परिषद में 66% नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी ने कब्जे किए हैं और नगर पालिकाओं में 65% नगर पालिकाएं में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विजय हुआ है। ये चुनाव राहुल गांधी के लिए सबक है और राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने 85% से अधिक वार्डों में अपनी जमानत जब्त की है। मैं राहुल गांधी जी को ये भी बताना चाहता हूं कि हमने त्रिपुरा में ग्राम समिति के जो चुनाव हुए उसमें 4600 सीटों में से 3248 सीटें और 900 सीटें कुल मिलाकर 77.5% मत हिस्सेदारी के साथ एनडीए लगभग 4000 से ज़्यादा सीटों पर जीतने में कामयाब हुई है और 4600 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 14 सीटें मिले हैं। और जो लोग बैलेट बॉक्स का बैलेट के मशीन का हवाला देते हैं उनको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि चुनाव बैलेट पेपर के साथ हुए हैं। जो बैलेट का मशीन भाजपा को चुनाव जिताता है वो तर्क को भी सिरे से खारिज करता है। त्रिपुरा में 33 साल से कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री जीत नहीं पाया है। बंगाल में 54 साल से कांग्रेस पार्टी को कोई जीत हासिल नहीं हुई है। बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात हमेशा कांग्रेस पार्टी 3-3 दशक, 4-4 दशक, 5-5 दशक से हारी है। मैं श्री राहुल गांधी जी को सीधा पूछना चाहता हूं कि क्या ये SIR का परिणाम है? SIR तो 24 के बाद चालू हुआ। आप जब से कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आए हैं और बाद में अध्यक्ष के रूप में आए हैं, लीडर ऑपोजिशन के रूप में आए हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारे। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। देश के कई सूबे ऐसे हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपको कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। आज भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है वो उनको फायदा नहीं करेगी। उनको जनता को समझना चाहिए, जनता का संपर्क करना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, SIR के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में NDA प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है। इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, BJP के साथ है, NDA के साथ है। इस सत्य को आप झुठला नहीं सकते। आज मैं फिर से एक बार त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, बंगाल और आसाम की जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सारे अपप्रचार की आंधी के बीच में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर, NDA पर अपनी मोहर लगाई है, पसंदगी की मोहर लगाई है और सब राष्ट्रवादी ताकतों का संबल बढ़ाया है। मैं इनका मन पूर्वक धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से करता हूं।
1: That was Home Minister Amit Shah there lashing out at the accusations made by leader of opposition Rahul Gandhi. To talk about all of this, we have with us Congress MP Dr. Abhishek Manu Singhvi. Thank you, Dr. Singhvi, for joining us. Thank you for waiting. Always a pleasure to have you on the show, on the channel. My first question to you, I'll ask you about what the Home Minister said, but let me start with a joint petition that has been filed. How optimistic is the Congress party that the court will look at the SIR process differently from the way it has done before?
2: This petition has nothing to do with the old matter. This has several new issues. Okay. It raises issues, for example, of lack of collective collegiate decision making. It raises issues that matters which had to have collegial decision making with a majority or by unanimity were not followed. It asks the question, please show the files where meetings were held and collective decisions taken. It points out that decisions like 16 lakh appeals to be filed in West Bengal, who took them, when, how. It asks the question, how and when was it decided to de facto, without any legal amendment, to make a change in Form 6, which no one except a statute or the government of India could do, not even the Election Commission, certainly not the CEC alone. And so on and so forth. None of these questions have been decided earlier. The court will hear it day after tomorrow.
1: Right.
2: We naturally have full faith and trust in the courts. Otherwise, do you think we have faith in the executive government of the day? We do believe that courts must discharge their due role in today's crisis-ridden times. They have to become the beacon of hope. Because unless and until they impart the healing touch, you can see that it's not a question of India Alliance. It's not a question of politics alone. It's a question of civil society, the amount of anger, the amount of discontent, the amount of dissatisfaction. It is the youth of India. It is the public of India. There are spontaneous joinings of protests across the country. So unless and until the court becomes that, steps in as that sentinel around whom we all gather, I think this country will be doomed, because we need that protection and that signal from the court, and we are hopeful that we will be listened to sympathetically and the court will intervene in accordance with law.
1: Okay. Dr. Singhvi, do you see the SIR as a mass issue that can mobilize voters from across states, all over the country? Do you see this as an issue that can unify all Indians against the Election Commission of India and, of course, the government? Do you see that happening? Do you see this SIR as a unifier for the opposition?
2: It's a commonsensical question, Vasudha. Ask yourself the question, if you really start believing that your vote is being diluted, your vote is not going to make the change it is intended to do, your vote will not have one man, one vote, one equal effect as it is intended to be, then that is the worst decimation of democracy. It excludes you from the citizenship of India. It excludes you from the collectivity to whom you belong and you think of yourself as an Indian. Your right to vote, howsoever marginal, howsoever individual, howsoever episodic once in 5 years, is your biggest weapon. So I think even the average man, the unempowered, the rickshaw puller and the laborer who cannot fight the Election Commission by waiting in queues and going to court, they are extremely deeply touched when they find that techniques which are unknown to law, over cleverness, asking for forms and father, grandfather proofs which are never asked for earlier, when that dilutes their vote, I think that is the acrosh you see, that is the anger you see. There is a great resonance, and I think it's a blunder to think that it is not something which moves the masses.
1: Okay. Dr. Singhvi, Also, how do you see the ruling party's accusation or claims that the Congress party is being two-faced in its claims and accusations?

0: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
1: कुछ इससे भी अनोखा।
0: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
3: यू नो डिजाइंस कितने हैं, लाख से भी ज्यादा डोर,
4: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
5: एक परिवार अटूट भरोसा।
6: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
7: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा क्या स्वाद है।
10: अरे मेरे राजा।
11: सबका राजा आर्टोर मसाला।
12: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
13: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
14: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
15: Hello and welcome to Watch and Prime 5 with me, Rachel Sager. What's happening?
14: The show that sets the prime time agenda.
15: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
14: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
16: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा, रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे,
1: बोझ पेंट रंग बना रहे,
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: The only female bassist to be ranked among Music Radar's top 10 bassists of the 21st century. From India to the world stage, Mohini Day has made the bass her voice. Meet her at the NDTV World Summit, a world between orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: Who's that?

0: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
1: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
2: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
3: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरनमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
4: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आके और मसाला।
6: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities.

0: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
1: बजे पेंट्स रंग बना रहे।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
3: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।
4: यार लोन भूल गया मैरी। इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
5: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
5: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन्ड कार लोन, टू व्हीलर लोन।
6: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
5: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
11: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
12: Guys, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। Any suggestions? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल?
5: स्मॉल? अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साड़ में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझ पेंट रंग बना रहे।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: The only female bassist to be ranked among Music Radar's top 10 bassists of the 21st century. From India to the world stage, Mohini Day has made the bass her voice.

0: restoration of democracy in India. Democracy has been destroyed in this country. The election system has been destroyed. The constitution has been torn up and thrown away. We are fighting together to restore democratic rule, genuine democratic rule in this country.
1: And well, those were the reactions that came in from Amit Shah and as well as Rahul Gandhi. But remember, like we were talking about, how there was a tea party that was held today at Rahul Gandhi's residence. There were other India bloc leaders also present, along with civil society members and also a student leader, Neha Bora. What was also discussed in that meeting was about the further process in which the agitation would be carried out. Here is a reaction that came in after the meeting that was held at Congress Leader of Opposition's residence, Rahul Gandhi. This one is from Kharge and Tejaswi Yadav. Listen into what they had to say.
2: हम आपको अगला प्रोग्राम क्या है इसके बारे में भी बताएंगे और जो चार दिन में जो प्रोग्राम्स इंडिया गठबंधन के ओर से चलाया गया राहुल जी और दूसरे नेता भी इसको बहुत ही गंभीरता से लेके जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए वो काम किए और बहुत ही बढ़िया सक्सेस आपने देखा होगा शायद ही इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं जुड़े दिल्ली में ये पहली बार है जो खुद अपने आप को सारे नौजवान लोग साथियों सभी लोग मिलके आए आप देखे हैं फिर उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता जो मोदी का प्लान है वोट चोरी का उसको पूरा एक्सपोज करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए
3: सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे ये देश गांधी जी का देश है ये देश लोहिया जी का देश है ये देश भगत सिंह का देश है ये देश कर्पूरी ठाकुर जी का देश है और इस देश को जो लोग संवैधानिक संस्था है जो इस देश की उसको हाईजैक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं चाहे ईडी हो सीबीआई हो इनकम टैक्स हो लेकिन इलेक्शन कमीशन और ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सज़ा ज़रूर मिलेगी ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं ये लोग डरे हुए लोग हैं
1: We're getting in some breaking news that's just coming in at this point in time. We learned that there's a case that's been filed against CJP leaders Saurav Das, Ashutosh Ranka and others by the Delhi police. And this has been filed under the charges of trespassing Jantar Mantar today and other charges. CJP leaders, remember, had gone to Jantar Mantar early in the morning today. They tried to scale the walls to illegally enter Jantar Mantar and this was done even after Jantar Mantar was denotified as a protest site and there were other protest sites that had been given out. Now remember, it was clearly mentioned that Jantar Mantar will no longer be used as a protest site. However, still this morning, CJP leaders had recorded a video where they showed themselves going to Jantar Mantar, holding the Indian flag in their hand and trying to protest as they were trying to trespass Jantar Mantar and climb the wall. That is where exactly when the Delhi police had stopped them, detained them, and now we learn FIR has been registered. Mukesh Sengar is joining us on the phone line to discuss more on this. Mukesh, what are the charges that have been invoked on the CJP leaders and what legal action is expected further?
4: जी देखिए दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है जिसमें एलिगेशन ये है कि ये जो सीजेपी के तीन नेता हैं जिसमें सौरभ दास है आशुतोष रांका है और साथ में

0: उसके काफी सपोर्टर्स थे। ये जंतर मंतर पर एक उसके पास में बिल्डिंग है जिसमें जेडीयू का दफ्तर है, वहां से ये इलीगल तरीके से घुसे और जंतर मंतर तक पहुंच गए। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तीनों को आज सुबह डिटेन कर लिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है जिसमें जेडीयू के दफ्तर की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया है कि जंतर मंतर में घुसने के लिए उनकी इमारत का इलीगल तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो उस शिकायत को भी लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने ट्रेस पासिंग के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में जो सीजेपी सपोर्टर्स हैं और जो सीजेपी के नेता हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस इन सभी को कुछ देर में गिरफ्तार करेगी और उसके बाद फिर इन तीनों की कोर्ट में पेशी होगी। उसके बाद क्या लीगल एक्शन होता है देखना होगा। जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स ऑल्सो टेल यू अबाउट वट हैपेंड टुडे इन द मॉर्निंग आफ्टर विच द एफ आई आर हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द सीजेपी लीडर्स। वेल अ डे आफ्टर द सेंटर हैड डी नोटिफाइड जंतर मंतर एज अ प्रोटेस्ट साइट अ बंच ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी वॉलंटियर्स लेड बाय इट्स लीडर आशुतोष रंका एंड सौरभ दास लैंडेड एट द साइट अर्ली दिस मॉर्निंग। द सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके पोस्टेड अ वीडियो ऑफ अ फ्लैश प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर वेयर सीजेपी वॉलंटियर्स वर सीन क्लाइंबिंग एन आयरन गेट बेसिकली ट्रेसपासिंग जंतर मंतर एंड अ पुलिस बैरिकेड reach that place to protest. The protesters were later detained by the Delhi police. CJP leader Saurav Das and Ashutosh Ranka said that Jantar Mantar will always be a protest site for them and requested people to join them in fact on Jantar Mantar for protest against the CC Gyanesh Kumar. We have certain reactions that came in earlier today when Ashutosh Ranka and Saurav Das were being detained. Let's listen into them.
2: मैंने अभी रत्ना से बात की है। रत्ना मुझे बता रही थी कि आशुतोष अजिंक्य और सौरभ को अलग अलग रखा गया है। उनके साथ जो 11 वॉलेंटियर्स हैं हमारे उनको कहीं और लेकर गए और जब हमारे लॉयर्स वहां पर पहुंचे पुलिस स्टेशन में तो पुलिस हमारे लॉयर्स को पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं घुसने दे रही है, पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं जाने दे रही है। और जब हमारे बाकी लोग पुलिस स्टेशन में जा रहे थे पूछने के लिए कि उन लोगों को क्यों अंदर रखा और कब तक अंदर रखा है तो उनको धमकाया जा रहा है कि तुम लोगों को भी डिटेन कर लेंगे। तो ये पूरी तरीके से देश में तानाशाही चल रही है जिसमें कोई नियम कायदा नहीं देखा जा रहा है, जिसमें संविधान में क्या लिखा है कुछ नहीं देखा जा रहा है। वकीलों को तो मिलने दे सकते हो ना आप, वकीलों को क्यों नहीं मिलने दे रहे हो?
3: ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये है जंतर मंतर। यहाँ हम लोग अंदर थे।
4: ये होम मिनिस्ट्री कौन होती है? हमारा जंतर मंतर ले जाने वाली जंतर मंतर डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड वी विल गेट द रेजिग्नेशन ऑफ ज्ञानेश कुमार फ्रॉम जंतर मंतर। दोस्तों सभी को आना पड़ेगा जंतर मंतर। दिल्ली चलो वाला नारा अभी भी हमारा है, ये प्रोटेस्ट होके रहेगा, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होगा और जंतर मंतर पे ही होगा।
5: जंतर मंतर हैज बीन ब्रीच, इनके किले को भेद दिया है हमने और आज जो किया है वो ट्रेलर है। आज 10 घुसे थे, कल 1000 घुसेंगे, परसों 10,000 लोग घुसेंगे। ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा और इस्तीफा हम लोग जंतर मंतर पर ही लेंगे। जो उखाड़ रहे उखाड़ लो, ज्ञानेश कुमार को लेकर ही दिल्ली से जाएंगे।
1: Moving on to the other stories that made headlines, the political row over sexual harassment allegations against the Congress MP and former JNU professor Bimal Akoyajam is escalating. BJP women MP submitted today a memorandum to the President of India seeking action against the Congress MP. The memorandum is seeking action against Congress MP Bimal Akoyajam, including suspension from the parliament as well, and a reference, of course, to the Lok Sabha Ethics Committee. Akoyajam was dismissed by JNU following an internal inquiry, while Delhi police has registered an FIR. The JNU Internal Complaints Committee has upheld the allegations of sexual harassment against the professor Bimal Akoyajam. The findings include inappropriate questions about students' personal lives, unwelcome physical contact and screenings of sexual content without prior warning. The BJP has demanded action against the Congress MP, while Akoyajam has questioned the university's handling of the inquiry. The allegations remain under investigation and have not resulted in a criminal conviction yet.
6: We were talking about the said professor who's been thrown out of JNU because of sexual harassment cases. 11 women have come out and alleged that he harassed them sexually. So we want to request Honorable President to throw him out as MP. Unko MPship se hataya jaye. कोई भी महिला सेफ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की महिलाएं क्यों हों, वो भी सेफ नहीं है उनके साथ काम करने में। और

0: मेंबर पार्लियामेंट भी, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो एक अलग संदेश देते हैं कि कोई भी स्कॉट फ्री छूट सकता है, इवन 11 बच्चियों को सेक्सुअली हैरेस करने के बाद भी।
1: आपके सिटिंग सांसद बिमल अकोइजम के खिलाफ आप एक्शन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तथ्यों पर बात कर रही है। बिमल अकोइजम के खिलाफ एक इंटरनल जेएनयू की कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है, जिसके कारण उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी जी, आपकी चुप्पी उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करती है, आपको शर्म आनी चाहिए।
2: Moving on, the Fly Dubai terror plot could be far bigger than initially believed. Two additional Maldivian pilots have been arrested in the UAE over an alleged plot to down a flight from Dubai to Tel Aviv. Their families have been notified. Meanwhile, there are disturbing new testimony from a passenger that has raised questions about possible crew involvement. The account alleges crew members tried to loosen Hamami's restraints, stop passengers from recording, and attempted to put a mystery pill into Captain Smith's mouth. The attacker also allegedly arranged for an all-male cabin crew. What was the motive? Was there a bigger cabal? Those details will be out once the investigation is complete in the case. With that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side as well.
3: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: सीएपी के तीन नेता हैं जिसमें सौरभ दास है, आशुतोष रांका है और साथ में उसके काफी सपोर्टर थे। ये जंतर मंतर पर एक उसके पास में बिल्डिंग है जिसमें जेडीयू का दफ्तर है, वहां से ये इलीगल तरीके से घुसे और जंतर मंतर तक पहुंच गए। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तीनों को आज सुबह डिटेन कर लिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है जिसमें जेडीयू के दफ्तर की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया है कि जंतर मंतर में घुसने के लिए उनकी इमारत का इलीगल तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो उस शिकायत को भी लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने ट्रेस पासिंग के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में जो सीजेपी सपोर्टर्स हैं और जो सीजेपी के नेता हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस इन सभी को कुछ देर में गिरफ्तार करेगी और उसके बाद फिर इन तीनों की कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद क्या लीगल एक्शन होता है देखना होगा। जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स ऑल्सो टेल यू अबाउट वट हैपन टूडे इन द मॉर्निंग आफ्टर विच द एफ आई आर हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द सीजेपी लीडर्स। वेल अ डे आफ्टर द सेंटर हैड डी नोटिफाइड जंतर मंतर एज अ प्रोटेस्ट साइट, अ बंच ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी वॉलंटियर्स लेड बाई इट्स लीडर आशुतोष रांका एंड सौरभ दास लैंडेड एट द साइट अर्ली दिस मॉर्निंग। द सीजेपी फाउंडर अभिजीत तिपके पोस्टेड वीडियो ऑफ अ फ्लैश प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर वे सीजेपी वॉलंटियर्स वे सीन क्लाइंबिंग एन आयरन गेट बेसिकली ट्रेसपासिंग जंतर मंतर एंड अ पुलिस बैरिकेड to reach that place to protest. The protesters were later detained by the Delhi police. CJP leader Saurabh Das and Ashutosh Ranka said that Jantar Mantar will always be a protest site for them and requested people to join them, in fact, on Jantar Mantar for protest against the CEC, Gyanesh Kumar. We have certain reactions that came in earlier today when Ashutosh Ranka and Saurabh Das were being detained. Let's listen into them.
2: मैंने अभी रत्ना से बात की है, रत्ना मुझे बता रही थी कि आशुतोष, अजिंक्य और सौरभ को अलग अलग रखा गया है, उनके साथ जो 11 वॉलंटियर्स हैं हमारे उनको कहीं और लेकर गए, और जब हमारे लॉयर्स वहां पर पहुंचे पुलिस स्टेशन में तो पुलिस हमारे लॉयर्स को पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं घुसने दे रही है, पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं जाने दे रही है। और जब हमारे बाकी लोग पुलिस स्टेशन में जा रहे थे पूछने के लिए कि उन लोगों को क्यों अंदर रखा और कब तक अंदर रखा है, तो उनको धमकाया जा रहा है कि तुम लोगों को भी डिटेन कर लेंगे। तो ये पूरी तरीके से देश में तानाशाही चल रही है जिसमें कोई नियम कायदा नहीं देखा जा रहा है, जिसमें संविधान में क्या लिखा है कुछ नहीं देखा जा रहा है। वकीलों को तो मिलने दे सकते हो ना आप, वकीलों को क्यों नहीं मिलने दे रहे हो?
3: ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये है जंतर मंतर, यहाँ हम लोग अंदर थे।
4: ये होम मिनिस्ट्री कौन होती है हमारा जंतर मंतर ले जाने वाली? जंतर मंतर डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड वी विल गेट द रेजिग्नेशन ऑफ ज्ञानेश कुमार फ्रॉम जंतर मंतर। दोस्तों सभी को आना पड़ेगा जंतर मंतर, दिल्ली चलो वाला नारा अभी भी हमारा है, ये प्रोटेस्ट होके रहेगा, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होगा और जंतर मंतर पे ही होगा।
5: जंतर मंतर हैज बीन ब्रीच, इनके किले को भेद दिया है हमने और आज जो किया है वो ट्रेलर है। आज 10 घुसे थे, कल 1000 घुसेंगे, परसों 10,000 लोग घुसेंगे। ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा और इस्तीफा हम लोग जंतर मंतर पर ही लेंगे, जो उखाड़ रहे उखाड़ लो। ज्ञानेश कुमार को लेकर ही दिल्ली से जाएंगे।
1: Moving on to the other stories that made headlines, the political row over sexual harassment allegations against the Congress MP and former JNU professor Bimal Akoyajam is escalating. BJP women MP submitted today a memorandum to the President of India seeking action against the Congress MP. The memorandum is seeking action against Congress MP Bimal Akoyajam, including suspension from the parliament as well, and a reference, of course, to the Lok Sabha Ethics Committee. Akoyajam was dismissed by JNU following an internal inquiry, while Delhi police has registered an FIR. The JNU Internal Complaints Committee has upheld the allegations of sexual harassment against the professor Bimal Akoyajam. The findings include inappropriate questions about students' personal lives, unwelcome physical contact and screenings of sexual content without prior warning. The BJP has demanded action against the Congress MP, while Akoyajam has questioned the university's handling of the inquiry. The allegations remain under investigation and have not resulted in a criminal conviction yet.
6: We were talking about the said professor who's been thrown out of JNU because of sexual harassment cases. 11 women have come out and alleged that he harassed them sexually. So we want to request Honorable President to throw him out as MP. Unko MP ship se hataya jaye. कोई भी महिला

0: सेफ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की महिलाएं क्यों हों वो भी सेफ नहीं है उनके साथ काम करने में, और मेंबर पार्लियामेंट भी, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो एक अलग संदेश देते हैं कि कोई भी स्कॉट फ्री छूट सकता है, इवन 11 बच्चियों को सेक्सुअली हैरेस करने के बाद भी।
1: आपके सिटिंग सांसद बिमल अकोइजम के खिलाफ आप एक्शन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तथ्यों पर बात कर रही है। बिमल अकोइजम के खिलाफ एक इंटरनल जेएनयू की कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है जिसके कारण उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी जी आपकी चुप्पी उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करती है, आपको शर्म आनी चाहिए।
2: Moving on, the Fly Dubai terror plot could be far bigger than initially believed. Two additional Maldivian pilots have been arrested in the UAE over an alleged plot to down a flight from Dubai to Tel Aviv. Their families have been notified. Meanwhile, there are disturbing new testimony from a passenger that has raised questions about possible crew involvement. The account alleges crew members tried to loosen Hamami's restraints, stop passengers from recording, and attempted to put a mystery pill into Captain Smith's mouth. The attacker also allegedly arranged for an all-male cabin crew. What was the motive? Was there a bigger cabal? Those details will be out once the investigation is complete in the case. With that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side as well.
3: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: And as well as Rahul Gandhi. But remember, like we were talking about, how there was a tea party that was held today at Rahul Gandhi's residence. There were other India bloc leaders also present, along with civil society members and also a student leader, Neha Bora. What was also discussed in that meeting was about the further process in which the agitation would be carried out. Here is a reaction that came in after the meeting that was held at Congress Leader of Opposition's residence, Rahul Gandhi. This one is from Kharge and Tejasvi Yadav. Listen to what they had to say.
1: हम आपको अगला प्रोग्राम क्या है इसके बारे में भी बताएंगे और जो चार दिन में जो प्रोग्राम्स इंडिया गठबंधन के ओर से चलाया गया राहुल जी और दूसरे नेता भी इसको बहुत ही गंभीरता से लेके जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए वो काम किए और बहुत ही बढ़िया सक्सेस आपने देखा होगा शायद ही इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं जुड़े दिल्ली में ये पहली बार है जो खुद अपने आप को सारे नौजवान लोग साथियों सभी लोग मिलके आए आप देखे हैं फिर उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता जो मोदी का प्लान है वोट चोरी का उसको पूरा एक्सपोज करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए
2: सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे ये देश गांधी जी का देश है ये देश लोहिया जी का देश है ये देश भगत सिंह का देश है ये देश कर्पूरी ठाकुर जी का देश है और इस देश को जो लोग संवैधानिक संस्था है जो इस देश की उसको हाईजैक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं चाहे ईडी हो सीबीआई हो इनकम टैक्स हो लेकिन इलेक्शन कमीशन और ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा ज़रूर मिलेगी ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं ये लोग डरे हुए लोग हैं
0: We're getting in some breaking news that's just coming in at this point in time. We learned that there is a case that's been filed against CJP leaders Saurav Das, Ashutosh Ranka and others by the Delhi police. And this has been filed under the charges of trespassing Jantar Mantar today and other charges. CJP leaders, remember, had gone to Jantar Mantar early in the morning today. They tried to scale the walls to illegally enter Jantar Mantar and this was done even after Jantar Mantar was denotified as a protest site and there were other protest sites that had been given out. Now remember, it was clearly mentioned that Jantar Mantar will no longer be used as a protest site. However, still this morning, CJP leaders had recorded a video where they showed themselves going to Jantar Mantar, holding the Indian flag in their hand and trying to protest as they were trying to trespass Jantar Mantar and climb the wall. That is where exactly when the Delhi police had stopped them, detained them, and now we learn FIR has been registered. Mukesh Sengar is joining us on the phone line to discuss more on this. Mukesh, what are the charges that have been invoked on the CJP leaders and what legal action is expected further?
3: जी देखिए दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है जिसमें एलिगेशन ये है कि ये जो सीजेपी के तीन नेता हैं जिसमें सौरभ दास है आशुतोष रांका है और साथ में उसके काफी सपोर्टर थे ये जंतर मंतर पर एक उसके पास में बिल्डिंग है जिसमें जेडीयू का दफ्तर है वहां से ये इलीगल तरीके से घुसे और जंतर मंतर तक पहुंच गए तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तीनों को आज सुबह डिटेन कर लिया था उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है जिसमें जेडीयू के दफ्तर की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें कहा गया है कि जंतर मंतर में घुसने के लिए उनकी इमारत का इलीगल तौर पर इस्तेमाल किया गया है तो उस शिकायत को भी लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने ट्रेस पासिंग के तहत मामला दर्ज किया है दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में जो CJP सपोर्टर्स हैं और जो CP

0: या सीजेपी के नेता हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो दिल्ली पुलिस इन सभी को कुछ देर में गिरफ्तार करेगी और उसके बाद फिर इन तीनों की कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद क्या लीगल एक्शन होता है देखना होगा। जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स ऑल्सो टेल यू अबाउट वट हैपन टूडे इन द मॉर्निंग आफ्टर विच द एफ आई आर हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द सीजेपी लीडर्स। वेल अ डे आफ्टर द सेंटर हैड डी नोटिफाइड जंतर मंतर एज अ प्रोटेस्ट साइट, अ बंच ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी वॉलंटियर्स लेड बाई इट्स लीडर आशुतोष रंका एंड सौरभ दास लैंडेड एट द साइट अर्ली दिस मॉर्निंग। द सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीप के पोस्टेड वीडियो ऑफ अ फ्लैश प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर वे सीजेपी वॉलंटियर्स वे सीन क्लाइंबिंग एन आयरन गेट बेसिकली ट्रेसपासिंग जंतर मंतर एंड अ पुलिस बैरिकेड to reach that place to protest. The protesters were later detained by the Delhi police. CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka said that Jantar Mantar will always be a protest site for them and requested people to join them, in fact, on Jantar Mantar for protest against the CEC, Gyanesh Kumar. We have certain reactions that came in earlier today when Ashutosh Ranka and Saurav Das were being detained. Let's listen into them.
2: मैंने अभी रत्ना से बात की है, रत्ना मुझे बता रही थी कि आशुतोष, अजिंक्य और सौरभ को अलग अलग रखा गया है, उनके साथ जो 11 वॉलंटियर्स हैं हमारे उनको कहीं और लेकर गए, और जब हमारे लॉयर्स वहां पर पहुंचे पुलिस स्टेशन में तो पुलिस हमारे लॉयर्स को पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं घुसने दे रही है, पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं जाने दे रही है, और जब हमारे बाकी लोग पुलिस स्टेशन में जा रहे थे पूछने के लिए कि उन लोगों को क्यों अंदर रखा और कब तक अंदर रखा है, तो उनको धमकाया जा रहा है कि तुम लोगों को भी डिटेन कर लेंगे। तो ये पूरी तरीके से देश में तानाशाही चल रही है, जिसमें कोई नियम कायदा नहीं देखा जा रहा है, जिसमें संविधान में क्या लिखा है कुछ नहीं देखा जा रहा है। वकीलों को तो मिलने दे सकते हो ना आप, वकीलों को क्यों नहीं मिलने दे रहे हो?
3: ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये है जंतर मंतर, यहाँ हम लोग अंदर थे।
4: ये होम मिनिस्ट्री कौन होती है हमारा जंतर मंतर ले जाने वाली? जंतर मंतर डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड वी विल गेट द रेजिग्नेशन ऑफ ज्ञानेश कुमार फ्रॉम जंतर मंतर। दोस्तों सभी को आना पड़ेगा जंतर मंतर, दिल्ली चलो वाला नारा अभी भी हमारा है, ये प्रोटेस्ट होके रहेगा, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होगा और जंतर मंतर पे ही होगा।
5: जंतर मंतर हैज बीन ब्रीच, इनके किले को भेद दिया है हमने और आज जो किया है वो ट्रेलर है। आज 10 घुसे थे, कल 1000 घुसेंगे, 10,000 लोग घुसेंगे। ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा और इस्तीफा हम लोग जंतर मंतर पर ही लेंगे, जो उखाड़ रहे उखाड़ लो। ऑपरेटिव ज्ञानेश कुमार को लेकर ही दिल्ली से जाएंगे।
1: Moving on to the other stories that made headlines, the political row over sexual harassment allegations against the Congress MP and former JNU professor Bimal Akoyajam is escalating. BJP women MP submitted today a memorandum to the President of India seeking action against the Congress MP. The memorandum is seeking action against Congress MP Bimal Akoyajam, including suspension from the parliament as well, and a reference, of course, to the Lok Sabha Ethics Committee. Akoyajam was dismissed by JNU following an internal inquiry, while Delhi police has registered an FIR. The JNU Internal Complaints Committee has upheld the allegations of sexual harassment against the professor Bimal Akoyajam. The findings include inappropriate questions about students' personal lives, unwelcome physical contact and screenings of sexual content without prior warning. The BJP has demanded action against the Congress MP, while Akoyajam has questioned the university's handling of the inquiry. The allegations remain under investigation and have not resulted in a criminal conviction yet.
6: We were talking about the said professor who's been thrown out of JNU because of sexual harassment cases. 11 women have come out and alleged that he harassed them sexually. So we want to request Honorable President to throw him out as MP. Unko MPship se hataya jaye. कोई भी महिला सेफ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की महिलाएं क्यों हों, वो भी सेफ नहीं है उनके साथ काम करने में और मेंबर पार्लियामेंट भी, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो एक अलग संदेश देता है कि कोई भी स्कॉट फ्री छूट सकता है, इवन 11 बच्चियों को सेक्सुअली हैरेस करने के बाद भी।
7: मतलब आपके सिटिंग सांसद बिमल अकोइजम के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी तथ्यों पर बात कर रही है। बिमल अकोइजम के खिलाफ एक इंटरनल जेएनयू की कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है, जिसके कारण उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी जी, आपकी चुप्पी उनके सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट

0: प्लेस कनॉट प्लेस में, वहां पे इनको सब ठीक है, पर बुरारी में जाएंगे पसीना आएगा, धूल आएगी, ये नहीं झेल पाएंगे, रील अच्छी नहीं बनेगी, चार पांच
1: टीशर्ट। प्रियंका भारती,
2: आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड, यस बाबा साहेब, यूज थ्री वर्ड्स एंड टोल्ड अस देश में करना क्या है, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, एंड जनता मंत्र इज द साइट वेयर वी फॉलो हिज वर्ड्स, एंड नॉट ओनली दिस, प्रदीप भंडारी, जस्ट टेल मी, किस दलित आदिवासी गरीब पिछड़े के पास 1,20,000 रुपए हैं कि वो आएगा, पहले जमा करेगा 55,000 सिक्योरिटी मनी और उसके बाद परमिशन लेगा कि इस तारीख को मैं प्रोटेस्ट करूंगा। भाई पेट का आंत सट गया है रीढ़ की हड्डी में, खाने को पैसे नहीं, जमीन छीन ली गई, जंगल काट दिए गए, पानी स्वच्छ पीने का नहीं है, और आप स्टारबक्स कॉफी की बात करते हो, मोदी जी नहीं है वो,
0: आपकी राजनीति जमीन चली गई मैडम, इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं है, दलितों की आय 55% बड़ी है, इस देश के दलित को, इस देश के दलित का अपमान मत करो,
2: इस देश के गरीब का अपमान मत करो,
0: मैं तो आपके प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ, अरे अभी तो आप ही हो ना,
1: बट इफ आई मे यू नो, सिंस यू आर स्पीकिंग फॉर द डिसएडवांटेज, आशुतोष, इवन दीज पीपल हु हैव गॉन टू द दिल्ली हाई कोर्ट, दे आर नॉट सम वेरी बिग बिजनेसेस, दीज आर बेसिकली स्मॉल टाइम ट्रेडर्स इन दैट एंटायर सेंट्रल Delhi area, and what have they written in their petition? They are saying that our business in Delhi is being severely affected by the ongoing protests. 2,000 crore business has vanished. These are festival season. We get business only during this period, which shows us our annual benefit for the entire period. October till February is the best time for business in Delhi, and that is being jeopardized. The issue of designated protest areas and the implementation of the mechanism governing demonstrations has repeatedly come before the courts. In fact, in an earlier judgment, the Supreme Court had said that you cannot have indefinite protests at Jantar Mantar. It is detrimental to the people who work in that area. And that's all these small traders are saying. They could also be backward and Dalits. Ashutosh.
3: Padmaja, I'll request Supreme Court to stop all kinds of protests in the country. No protest. It will be pro-business. It will be pro-industry. The GDP will run like a racing horse. So stop all kinds of protests. Why people are protesting in the country? There should be no elections. Stop it, because that also stops businesses to grow. See, what kind of logic is this? I just fail to understand. How many crores of rupees went here and there when the Babri Masjid, the Ramjan movement was going on? How many cities were affected? Crores and crores and crores. Is there any quantifiable figure about it? What kind of anarchy was created then, about which the Supreme Court has said it was a criminal act?
1: Protests are not being stopped. You can protest, but please protest in Ramlila Maidan. Even Baba Ramdev, by the Sheila Dikshit government, had been denied access to Central Delhi.
0: Yeah.
1: So he was sitting in Ramlila Maidan himself. He was not sitting at Jantar Mantar, because he had a large number of people. He went and sat at Jantar Mantar, at Ramlila Maidan.
3: पहला तो मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि इस देश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा? प्रोटेस्ट बंद कर दो ना, डेमोक्रेसी को खत्म कर दो, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेट्स हैव अ चाइनीज मॉडल, वन गवर्नमेंट, वन पार्टी, वन लीडर एंड नो बार, कर दो, सारा बिजनेस फ्लरिश करेगा, हम चाइना की तरीके से ग्रो करेंगे।
0: किसी बीटी बातें कर रहे
3: हैं। डिस्टर्ब प्रदीप, प्लीज हैव सम,
1: वी डोंट हैव टू स्विंग बिटवीन एक्सट्रीम्स। ये तो ये हो गया कि आप पैसा कमाना बंद कर दो, बट या तो मैं चोरी करूंगा या मैं पैसे कमाना बंद कर दूंगा। यू कैन हैव अ मिडिल पाथ, दैट थिंग्स कैन बी डन इन अ लॉफुल।
3: देयर इज नो मिडिल पाथ पद्मजा, देयर इज नो मिडिल पाथ, बिकॉज आई एम रियली अम्यूज्ड व्हेन आई हियर फ्रॉम द बीजेपी दैट दे हैव दैट दे रिस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। They've forgotten what Sudarshan has said in 2007, scrap the constitution. When Raju Bhaiya has written for the Indian Express in 1993, scrap the constitution.
1: Arre sir, you always rage bait and you're going to now again go off on a tangent from the main topic. We're talking about demonstration, we've gone back to Raju Bhaiya.
3: No.
1: Abhi then you will say ki wo RSS ne jhanda nahi phehraya tha apne kabhi office ke andar.
3: Padmaja, listen to me. I'm not going on a tangent. I'm going to the core philosophy of the RSS and the BJP. These are written documents.
0: Can I answer that?
3: As early as 2007. And now these people are coming out and saying they believe.
0: Can I answer?
3: They believe in Indian constitution.
1: Okay, so you are saying that Jantar Mantar should be accessible to everyone for as long as they want.
3: No,
1: there should be no time limit within which somebody should be.

0: बढ़िया सक्सेस आपने देखा होगा, शायद ही इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं जुड़े दिल्ली में। ये पहली बार है जो खुद अपने आप को सारे नौजवान लोग, साथियों, सभी लोग मिलके आए, आप देखे हैं, फिर उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। जो मोदी का प्लान है वोट चोरी का, उसको पूरा एक्सपोज करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए।
1: सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे। ये देश गांधी जी का देश है, ये देश लोहिया जी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश कर्पूरी ठाकुर जी का देश है, और इस देश को जो लोग संवैधानिक संस्था है जो इस देश की, उसको हाईजैक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन और ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं।
2: We're getting in some breaking news that's just coming in at this point in time. We learned that there's a case that's been filed against CJP leaders Saurav Das, Ashutosh Ranka and others by the Delhi police. And this has been filed under the charges of trespassing Jantar Mantar today and other charges. CJP leaders, remember, had gone to Jantar Mantar early in the morning today. They tried to scale the walls to illegally enter Jantar Mantar and this was done even after Jantar Mantar was denotified as a protest site, and there were other protest sites that had been given out. Now remember, it was clearly mentioned that Jantar Mantar will no longer be used as a protest site. However, still this morning, CJP leaders had recorded a video where they showed themselves going to Jantar Mantar, holding a flag, holding the Indian flag in their hand and trying to protest as they were trying to trespass Jantar Mantar and climb the wall. That is where exactly when the Delhi police had stopped them, detained them, and now we learn FIR has been registered. Mukesh Sengar is joining us on the phone line to discuss more on this. Mukesh, what are the charges that have been invoked on the CJP leaders and what legal action is expected further?
3: जी देखिए, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है, जिसमें एलिगेशन ये है कि ये जो सीजेपी के तीन नेता हैं, जिसमें सौरभ दास है, आशुतोष रांका है और साथ में उसके काफी सपोर्टर थे, ये जंतर मंतर पर एक उसके पास में बिल्डिंग है जिसमें जेडीयू का दफ्तर है, वहां से ये इलीगल तरीके से घुसे और जंतर मंतर तक पहुंच गए। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तीनों को आज सुबह डिटेन कर लिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है, जिसमें जेडीयू के दफ्तर की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया है कि जंतर मंतर में घुसने के लिए उनकी इमारत का इलीगल तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो उस शिकायत को भी लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने ट्रेस पासिंग के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में जो सीजेपी सपोर्टर्स हैं और जो सीजेपी के नेता हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस इन सभी को कुछ देर में गिरफ्तार करेगी और उसके बाद फिर इन तीनों की कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद क्या लीगल एक्शन होता है देखना होगा। जी
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स ऑल्सो टेल यू अबाउट वट हैपेंड टुडे इन द मॉर्निंग, आफ्टर विच द FIR हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द CJP लीडर्स। वेल, अ डे आफ्टर द सेंटर हैड डी नोटिफाइड जंतर मंतर एज अ प्रोटेस्ट साइट, अ बंच ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी वॉलंटियर्स लेड बाय इट्स लीडर आशुतोष रांका एंड सौरव दास लैंडेड एट द साइट अर्ली दिस मॉर्निंग। द CJP फाउंडर अभिजीत दीप के पोस्टेड अ वीडियो ऑफ अ फ्लैश प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर, वेयर CJP वॉलंटियर्स वर सीन क्लाइंबिंग एन आयरन गेट, बेसिकली ट्रेसपासिंग जंतर मंतर एंड अ पुलिस बैरिकेड reach that place to protest. The protesters were later detained by the Delhi police. CJP leader Saurav Das and Ashutosh Ranka said that Jantar Mantar will always be a protest site for them and requested people to join them, in fact, on Jantar Mantar for protest against the CC Gyanesh Kumar. We have certain reactions that came in earlier today when Ashutosh Ranka and Saurav

0: दास वे बीइंग डिटेन्ड, लेट्स लिसन इनटू देम।
1: मैंने अभी रत्ना से बात की है, रत्ना मुझे बता रही थी कि आशुतोष, अजिंक्य और सौरभ को अलग अलग रखा गया है। उनके साथ जो 11 वॉलंटियर्स हैं हमारे, उनको कहीं और लेकर गए, और जब हमारे लॉयर्स वहां पर पहुंचे पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस हमारे लॉयर्स को पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं घुसने दे रही है, पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं जाने दे रही है। और जब हमारे बाकी लोग पुलिस स्टेशन में जा रहे थे पूछने के लिए कि उन लोगों को क्यों अंदर रखा और कब तक अंदर रखा है, तो उनको धमकाया जा रहा है कि तुम लोगों को भी डिटेन कर लेंगे। तो ये पूरी तरीके से देश में तानाशाही चल रही है, जिसमें कोई नियम कायदा नहीं देखा जा रहा है, जिसमें संविधान में क्या लिखा है कुछ नहीं देखा जा रहा है। वकीलों को तो मिलने दे सकते हो ना आप, वकीलों को क्यों नहीं मिलने दे रहे हो?
2: ये देखो, आपको दिखाता हूँ, ये है जंतर मंतर। यहाँ हम लोग अंदर थे।
3: ये होम मिनिस्ट्री कौन होती है? हमारा जंतर मंतर ले जाने वाली जंतर मंतर डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, एंड वी विल गेट द रेजिग्नेशन ऑफ ज्ञानेश कुमार फ्रॉम जंतर मंतर। दोस्तों सभी को आना पड़ेगा जंतर मंतर। दिल्ली चलो वाला नारा अभी भी हमारा है, ये प्रोटेस्ट होके रहेगा, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होगा और जंतर मंतर पे ही होगा।
4: जंतर मंतर हैज बीन ब्रीच, इनके किले को भेद दिया है हमने, और आज जो किया है वो टेलर है। आज 10 घुसे थे, कल 1000 घुसेंगे, परसों 10,000 लोग घुसेंगे। ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा, और इस्तीफा हम लोग जंतर मंतर पर भी लेंगे। जो उखाड़ रहे उखाड़ लो, चीज ज्ञानेश कुमार को लेकर ही दिल्ली से जाएंगे।
0: Moving on to the other stories that made headlines, the political row over sexual harassment allegations against the Congress MP and former JNU professor Bimal Akoyajam is escalating. BJP women MP submitted today a memorandum to the President of India seeking action against the Congress MP. The memorandum is seeking action against Congress MP Bimal Akoyajam, including suspension from the parliament as well, and a reference, of course, to the Lok Sabha Ethics Committee. Akoyajam was dismissed by JNU following an internal inquiry, while Delhi police has registered an FIR. The JNU Internal Complaints Committee has upheld the allegations of sexual harassment against the professor Bimal Akoyajam. The findings include inappropriate questions about students' personal lives, unwelcome physical contact, and screenings of sexual content without prior warning. The BJP has demanded action against the Congress MP, while Akoyajam has questioned the university's handling of the inquiry. The allegations remain under investigation and have not resulted in a criminal conviction yet.
5: We were talking about the said professor who's been thrown out of JNU because of sexual harassment cases. 11 women have come out and alleged that he harassed them sexually. So we want to request Honorable President to throw him out as MP. Unko MPship se hataya jaye. कोई भी महिला सेफ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की महिलाएं क्यों हों, वो भी सेफ नहीं है उनके साथ काम करने में, और मेंबर पार्लियामेंट भी, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो एक अलग संदेश देते हैं कि कोई भी स्कॉट फ्री छूट सकता है, इवन 11 बच्चियों को सेक्सुअली हैरेस करने के बाद भी।
6: आपके सिटिंग सांसद बिमल अकोइजम के खिलाफ आप एक्शन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तथ्यों पर बात कर रही है। बिमल अकोइजम के खिलाफ एक इंटरनल जेएनयू की कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है, जिसके कारण उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी जी, आपकी चुप्पी उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करती है, आपको शर्म आनी चाहिए।
0: Moving on, the Fly Dubai terror plot could be far bigger than initially believed. Two additional Maldivian pilots have been arrested in the UAE over an alleged plot to down a flight from Dubai to Tel Aviv. Their families have been notified. Meanwhile, there are disturbing new testimony from a passenger that has raised questions about possible crew involvement. The account alleges crew members tried to loosen Hamami's restraints, stop passengers from recording, and attempted to put a mystery pill into Captain Smith's mouth. The attacker also allegedly arranged for an all-male cabin crew. What was the motive? Was there a bigger cabal? Those details will be out once the investigation is complete in the case. With that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side as well.
7: Five hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get

0: कार से ज्ञानेश गुप्ता जी ने, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे। ये देश गांधी जी का देश है, ये देश लोहिया जी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश कर्पूरी ठाकुर जी का देश है, और इस देश को जो लोग संवैधानिक संस्था है जो इस देश की, उसको हाईजैक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन और ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा ज़रूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं।
1: We're getting in some breaking news that's just coming in at this point in time. We learned that there is a case that's been filed against CJP leaders Saurav Das, Ashutosh Ranka and others by the Delhi police. And this has been filed under the charges of trespassing Jantar Mantar today and other charges. CJP leaders, remember, had gone to Jantar Mantar early in the morning today. They tried to scale the walls to illegally enter Jantar Mantar and this was done even after Jantar Mantar was denotified as a protest site, and there were other protest sites that had been given out. Now remember, it was clearly mentioned that Jantar Mantar will no longer be used as a protest site. However, still this morning CJP leaders had recorded a video where they showed themselves going to Jantar Mantar, holding a flag, holding the Indian flag in their hand and trying to protest as they were trying to trespass Jantar Mantar and climb the wall. That is where exactly when the Delhi police had stopped them, detained them, and now we learn FIR has been registered. Mukesh Sengar is joining us on the phone line to discuss more on this. Mukesh, what are the charges that have been invoked on the CJP leaders, and what legal action is expected further?
2: जी देखिए, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है, जिसमें एलिगेशन ये है कि ये जो सीजेपी के तीन नेता हैं, जिसमें सौरभ दास है, आशुतोष रांका है और साथ में उसके काफी सपोर्टर थे, ये जंतर मंतर पर एक उसके पास में बिल्डिंग है जिसमें जेडीयू का दफ्तर है, वहां से ये इलीगल तरीके से घुसे और जंतर मंतर तक पहुंच गए। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तीनों को आज सुबह डिटेन कर लिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है, जिसमें जेडीयू के दफ्तर की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया है कि जंतर मंतर में घुसने के लिए उनकी इमारत का इलीगल तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो उस शिकायत को भी लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने ट्रेस पासिंग के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में जो सीजेपी सपोर्टर्स हैं और जो सीजेपी के नेता हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस इन सभी को कुछ देर में गिरफ्तार करेगी और उसके बाद फिर इन तीनों की कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद क्या लीगल एक्शन होता है देखना होगा। जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स ऑल्सो टेल यू अबाउट वट हैपन टूडे इन द मॉर्निंग आफ्टर विच द FIR हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द CJP लीडर्स। वेल, अ डे आफ्टर द सेंटर हैड डी नोटिफाइड जंतर मंतर एज अ प्रोटेस्ट साइट, अ बंच ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी वॉलंटियर्स लेड बाय इट्स लीडर आशुतोष रांका एंड सौरभ दास लैंडेड एट द साइट अर्ली दिस मॉर्निंग। द CJP फाउंडर अभिजीत तिपके पोस्टेड वीडियो ऑफ अ फ्लैश प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर, वेर CJP वॉलंटियर्स वर सीन क्लाइंबिंग एन आयरन गेट, बेसिकली ट्रेसपासिंग जंतर मंतर एंड अ पुलिस बैरिकेड to reach that place to protest. The protesters were later detained by the Delhi police. CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka said that Jantar Mantar will always be a protest site for them and requested people to join them, in fact, on Jantar Mantar for protest against the CC Gyanesh Kumar. We have certain reactions that came in earlier today when Ashutosh Ranka and Saurav Das were being detained. Let's listen into them.
3: मैंने अभी रत्ना से बात की है, रत्ना मुझे बता रही थी कि आशुतोष, अजिंक्य और सौरभ को अलग अलग रखा गया है, उनके साथ जो 11 वॉलंटियर्स हैं हमारे उनको कहीं और लेकर गए, और जब हमारे लॉयर्स वहां पर पहुंचे पुलिस स्टेशन में तो पुलिस हमारे लॉयर्स को पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं घुसने दे रही है, पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं जाने दे रही है, और जब हमारे बाकी लोग पुलिस स्टेशन में जा रहे थे पूछने के लिए कि उन लोगों को क्यों अंदर रखा और कब तक अंदर रखा है, तो उनको धमकाया जा रहा है कि तुम लोगों को भी डिटेन कर लेंगे। तो ये पूरी तरीके से देश में तानाशाही चल रही है, जिसमें कोई नियम कायदा नहीं देखा जा रहा है, जिसमें संविधान में क्या लिखा है कुछ नहीं देखा जा रहा है। वकीलों को तो मिलने

0: उसको पूरा एक्सपोज करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए।
1: सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे थे। हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे। ये देश गांधी जी का देश है, ये देश लोहिया जी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश कर्पूरी ठाकुर जी का देश है, और इस देश को जो लोग संवैधानिक संस्था है जो इस देश की, उसको हाईजैक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन और ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं।
2: We're getting in some breaking news that's just coming in at this point in time. We learned that there's a case that's been filed against CJP leaders Saurav Das, Ashutosh Ranka and others by the Delhi police. And this has been filed under the charges of trespassing Jantar Mantar today and other charges. CJP leaders, remember, had gone to Jantar Mantar early in the morning today. They tried to scale the walls to illegally enter Jantar Mantar and this was done even after Jantar Mantar was denotified as a protest site, and there were other protest sites that had been given out. Now remember, it was clearly mentioned that Jantar Mantar will no longer be used as a protest site. However, still this morning, CJP leaders had recorded a video where they showed themselves going to Jantar Mantar, holding the Indian flag in their hand and trying to protest as they were trying to trespass Jantar Mantar and climb the wall. That is where exactly when the Delhi police had stopped them, detained them, and now we learn FIR has been registered. Mukesh Sengar is joining us on the phone line to discuss more on this. Mukesh, what are the charges that have been invoked on the CJP leaders and what legal action is expected further?
3: जी देखिए, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है, जिसमें एलिगेशन ये है कि ये जो सीजेपी के तीन नेता हैं, जिसमें सौरभ दास है, आशुतोष रांका है और साथ में उसके काफी सपोर्टर थे, ये जंतर मंतर पर एक उसके पास में बिल्डिंग है जिसमें जेडीयू का दफ्तर है, वहां से ये इलीगल तरीके से घुसे और जंतर मंतर तक पहुंच गए। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तीनों को आज सुबह डिटेन कर लिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है, जिसमें जेडीयू के दफ्तर की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया है कि जंतर मंतर में घुसने के लिए उनकी इमारत का इलीगल तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो उस शिकायत को भी लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने ट्रेस पासिंग के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में जो सीजेपी सपोर्टर्स हैं और जो सीजेपी के नेता हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस इन सभी को कुछ देर में गिरफ्तार करेगी और उसके बाद फिर इन तीनों की कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद क्या लीगल एक्शन होता है देखना होगा। जी
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स ऑल्सो टेल यू अबाउट वट हैपेंड टुडे इन द मॉर्निंग, आफ्टर विच द FIR हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द CJP लीडर्स। वेल, अ डे आफ्टर द सेंटर हैड डी नोटिफाइड जंतर मंतर एज अ प्रोटेस्ट साइट, अ बंच ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी वॉलंटियर्स लेड बाय इट्स लीडर आशुतोष रांका एंड सौरभ दास लैंडेड एट द साइट अर्ली दिस मॉर्निंग। द CJP फाउंडर अभिजीत दीप के पोस्टेड अ वीडियो ऑफ अ फ्लैश प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर, वेर CJP वॉलंटियर्स वर सीन क्लाइंबिंग एन आयरन गेट, बेसिकली ट्रेसपासिंग जंतर मंतर एंड अ पुलिस बैरिकेड to reach that place to protest. The protesters were later detained by the Delhi police. CJP leader Saurav Das and Ashutosh Ranka said that Jantar Mantar will always be a protest site for them and requested people to join them, in fact, on Jantar Mantar for protest against the CC Gyanesh Kumar. We have certain reactions that came in earlier today when Ashutosh Ranka and Saurav Das were being detained. Let's listen into them.
4: मैंने अभी रत्ना से बात की है, रत्ना मुझे बता रही थी कि आशुतोष, अजिंक्य और सौरभ को अलग अलग रखा गया है, उनके साथ जो 11 वॉलेंटियर्स हैं हमारे उनको कहीं और लेकर गए, और जब हमारे लॉयर्स वहां पर पहुंचे पुलिस स्टेशन में तो पुलिस हमारे लॉयर्स को पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं घुसने दे रही है, पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं जाने दे रही है, और जब हमारे बाकी लोग पुलिस स्टेशन में जा रहे थे पूछने के लिए कि उन लोगों को क्यों अंदर रखा है और कब तक अंदर रखा है, तो उनको धमकाया जा रहा है कि तुम लोगों को भी डिटेन कर लेंगे। तो ये पूरी तरह से